0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ரவி கபூர். आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से

0: गैस एक पनडुब्बी योधी युद्ध पोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। International Yoga Day 2026 is being celebrated across the globe today. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. The main event of International Day of Yoga is being held at the historic Red Road in Kolkata in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi will lead the nation in the practice of the Common Yoga Protocol. The national celebration is underway at Red Road, witnessing participation of thousands of yoga enthusiasts at the venue, while millions of citizens are expected to join virtually from across India and abroad. The event will reaffirm yoga's growing role as a global movement promoting health, harmony and collective well-being. More from our correspondent.
2: The Ministry of Culture is organizing a special yoga celebrations across 100 iconic locations in the country, connecting India's rich cultural heritage, historical landmarks and yoga traditions. As part of this initiative, major celebrations will be held at 12 prominent locations including Red Fort in New Delhi, Haridwar in Uttarakhand, Konark in Odisha, Hampi in Karnataka, Mahabalipuram in Tamil Nadu, Mumbai in Maharashtra, Nalanda in Bihar, Ahmedabad in Gujarat, Sarnath in Uttar Pradesh, Leh in Ladakh, Hyderabad in Telangana and Silchar in Assam. In coordination with the Indian Council for Cultural Relations, more than 210 Indian missions abroad will organize yoga events at nearly 2,500 locations across the world. In Delhi, yoga celebrations are being organized at prominent public locations including Lawn of Shantipath, Kartavya Path, New Moti Bagh, CP Central Park, Talkatora Garden and Yamuna Sports Complex. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
1: President Draupadi Murmu will be the chief guest at the state-level International Yoga Day program in Jabalpur, Madhya Pradesh today. The event will begin at 7:30 in the morning at Garrison Ground in Sadar. The National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG re-examination, will be conducted this afternoon. The re-examination will be

0: जी हाँ, आज अंतर्राष्ट्रीय योग डे यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसको प्रतिवर्ष 21 जून को मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र द्वारा लिया गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित किया है। योग हजारों साल से भारतीयों की जीवन शैली का हिस्सा रहा है, ये भारत की धरोहर है। विश्व के कई हिस्सों में इसका प्रचार प्रसार हो चुका है और अभी भी हो रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के इस निर्णय के बाद अब योग का विस्तार और भी तेजी से हो रहा है। इसके अलावा आज विश्व संगीत दिवस भी है, जिसकी चर्चा हम कार्यक्रम के अगले हिस्से में करेंगे। तो इसी प्रारंभिक जानकारी के साथ रविवार की नई नवेली सुबह में ढेर सारी नई चुनौतियों के साथ में समाचार पत्रिका कार्यक्रम आज सवेरे लेकर आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं श्रोताओं के ही अपने रवि कपूर और शगुन चोपड़ा। स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार।
1: Well, yes, namaskar, good morning, good day everybody, a very warm welcome to all our listeners. Yes, Ravi, International Yoga Day is being celebrated today. Yoga actually, it is not just a workout, it's a work in. And this is the point of spiritual practice actually, to make us teachable, to open up our hearts and focus our awareness so that we can know what we already know, what we are already aware of, and be who we already are.
0: Jee.
1: Right? So yoga philosophy and all the great Buddhist teachings, they tell us that solidity, it is a creation of the ordinary mind, and that there never was anything permanent to begin with. We are talking about impermanence as well, and that there never was anything to begin with that we could hold on to. And Ravi, life would be much easier and substantially less painful if we live with the knowledge of impermanence as the only constant. So we should remind ourselves of that every day. With that, let's begin our program. We have so much that we will be unfolding. Today it's also World Music Day, Fedala Music. More on that later in the program. So let's begin with the headlines.
0: जी बिल्कुल, शुरू कर लेते हैं सिलसिला मुख्य समाचारों का। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय

0: है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
2: Prime Minister Narendra Modi is leading the national celebration from the historic Red Road in Kolkata, where around 35,000 participants are joining him in performing the common yoga protocol. Several union ministers, state ministers and senior officials, they are also taking part in yoga day events being organized across the country. The national celebration reaffirms yoga's growing role as a global movement, promoting health, harmony and collective well-being. We have a detailed report from our correspondent. Listen in.
3: International Day of Yoga is witnessing enthusiastic participation across the country and abroad. The Ministry of Culture, in collaboration with Archaeological Survey of India, is organizing special yoga programs at 100 iconic locations, linking India's rich cultural heritage with its enduring yoga traditions. Major celebrations are being held at 12 prominent sites, including Red Fort in New Delhi, Haridwar, Konark, Hampi, Mahabalipuram, Mumbai, Nalanda, Ahmedabad, Sarnath, Leh, Hyderabad and Silchar. The Ministry of Ayush said that over 6 lakh organizations have registered on Yoga Sangam portal, reflecting unprecedented public participation in this year's celebration. Internationally, more than 210 Indian missions are organizing yoga events at nearly 2,500 locations across the world through coordinated efforts of the Indian Council for Cultural Relations. In Delhi, yoga celebrations are being held at several prominent public locations, including the Lawn of Santipat, Kartavyapat, New Moti Bagh, Central Park in Cannaught Place, Talkatora Garden and Yamuna Sports Complex. Rohan, Akashwani News, Delhi.
2: So yoga celebrations, they began yesterday only, where yoga enthusiasts across several Western countries practiced yoga in large groups yesterday ahead of International Day of Yoga, which is today. So first, in Canada's Toronto, an enthusiastic gathering of government representatives, diplomatic corps, yoga practitioners, wellness organizations and community leaders participated in a yoga session against the historic backdrop of the Legislative Assembly of Ontario. In Brazil, a curated yoga session was led by the Ambassador of India to Brazil, Dinesh Bhatia, at the majestic Foz do Iguaçu waterfalls. Denmark yoga team in Aarhus organized the Day of Yoga celebrations in Dock 1. And according to the Embassy of India in Washington, D.C., hundreds, they came together at the iconic Lincoln Memorial. Yoga celebrations, enthusiastically participating people.
0: जी बिल्कुल, कहने का मतलब ये है शगुन कि आज पूरे विश्व में योग दिवस की बहार है।
2: एग्जैक्टली रवि।
0: चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में ही नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी

0: रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। आईएनएस दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। आईएनएस संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। आईएनएस अग्रे तटीय रक्षा के लिए टॉरपीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है।
1: Now let's focus our attention on the 19th Mumbai International Film Festival, MIFF. This will draw to a close today. The biennial festival, this biennial festival of documentaries, short fiction, animation and AI cinema began on 15th June and this will conclude tonight with a grand closing ceremony. Let's find out more details from our correspondent.
2: After 5 fully packed days of cinematic extravaganza, MIFF 2026 will conclude today. However, before the closing ceremony, film enthusiasts will have another day to experience the power of non-fiction storytelling across various sections, including Prism, Best of Fest, National Competition, Mosaic, and India, Lives and Landscapes, among others. One of the key attractions on the final day of MIFF will be the screening of V. Shantaram, The Pioneering Spirit, marking the 125th birth anniversary year of the legendary filmmaker. At the closing ceremony, scheduled to take place this evening at Mumbai's Ravindranatya Mandir, the best films will receive 18 awards across the international and national competition categories, carrying a total prize money of 45 lakh rupees along with trophies and certificates. Ankita Apte, Akashwani News, Mumbai.
0: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जा रही है। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया।
1: India A will take on Sri Lanka A in the Tri-Series cricket final scheduled to be played in Dambulla today. The match will start at 10 in the morning, 10 a.m. Smarting from an ill-tempered defeat in their previous match, India A will look to settle scores when they take on Sri Lanka A in the final, with teenage sensation Vaibhav Suryavanshi set to be in the spotlight once again. Now in FIFA World Cup, Germany defeated Ivory Coast 2-1 in Toronto, Canada and clinched a spot in the knockout phase at the tournament. For Germany, Dennis Undaf scored twice. Earlier, Netherlands secured a commanding 5-1 victory over Sweden in Group F match at NRG Stadium in Houston, United States.
0: जी, चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में एक विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के समाचारों पर एक नजर। तो शगुन, बताइए आप किस मेट्रो के समाचार से शुरुआत कर रही हैं?
1: रवि, आई विल बी बिगिनिंग विद चेन्नई। आई हैव टू अपडेट्स फ्रॉम चेन्नई। फर्स्ट वन, द स्टेट गवर्नमेंट हैज सॉट अ 3-month एक्सटेंशन फॉर चीफ सेक्रेटरी एम साई कुमार, हु इज ड्यू फॉर सुपर एन्युएशन ऑन 31st ऑफ ऑगस्ट। ECI had appointed him during the election period. The proposal to extend Chief Secretary's service was sent a few days ago with Chief Minister C. Joseph Fitch's approval. Another update. Indian Union Muslim League has announced it was ending its long-standing ties with DMK that endured through multiple elections in Tamil Nadu. The National President, Kadir Muhyiddin, thanked Chief Minister C. Joseph Vijay for accommodating Indian Union Muslim League in his cabinet.
0: Ji.
1: Now we'll focus our attention on Bengaluru. The Railway Board has approved the operation of the Gol Gumbaz Express between Mysuru and Pandharpur through the Hubli and Gaddag bypass routes, reducing travel time by nearly 55 minutes. So welcoming this decision, Karnataka Infrastructure Development Minister M.B. Patil said that this approval fulfills a long-pending demand of passengers from Vijaypura and Bagalkote districts. He thanked Union Railway Minister Ashwini Vaishnav and V. Somanna for their support in securing the revised routing. So under the new schedule, the train will hold

0: play a crucial role in achieving the vision of developed India by 2047 and in building a knowledge-based society. Speaking at an academic meet on From Access to Excellence, the Future Pathways of Distance Education and the release of the book Education, an overview of formal open and distance learning at Karnataka State Open University, Mysuru, the governor highlighted the transformative role of technology, also digital resources and innovative teaching methods in expanding educational opportunities. He also noted that distance education, particularly it benefits women, persons with disabilities and socially disadvantaged groups by providing flexible learning opportunities. Now turning our attention to Hyderabad. The Telangana Endowments Department is set for a major transformation with the launch of the State Institute of Temple Administration. And this aims at positioning the state as a premier national leader in temple administration, skill development and modern management practices. Telangana Endowments Minister Konda Surekha officially inaugurated State Institute of Temple Administration in Bogulkunta on Saturday. Speaking on this occasion, the minister emphasized that the department's initiatives could succeed only through the seamless coordination and dedication of priests and staff. Now over to you, Ravi, for updates from Delhi, Mumbai, Kolkata.
1: Ji, dhanyavad. Mukhyamantri Rekha Gupta ne kaha hai ki प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त सभी अन्नदाताओं के अथक परिश्रम और योगदान के प्रति सम्मान का निरंतर प्रयास है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 18,880 करोड़ रुपए की सीधी सहायता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सहयोग किसानों को कृषि संबंधी खर्चों में आर्थिक संबल प्रदान कर रहा है और उत्पादकता तथा आय वृद्धि में सहायक बन रहा है। दिल्ली सरकार ने आज होने वाली नीट प्रवेश परीक्षा के लिए विशेष तैयारियां की हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास जिला प्रशासन की ओर से विशेष कूलिंग जोन स्थापित किए गए हैं, जहां अभिभावकों के बैठने और विश्राम की व्यवस्था के साथ साथ स्वच्छ पेयजल, शिकंजी, ओआरएस, चाय और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के बाहर ही छात्रों और उनके परिजनों के लिए प्रतीक्षा व्यवस्था उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि परीक्षा के दिन किसी भी परिवार को परिवहन, गर्मी या प्रतीक्षा से जुड़ी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि नीट अभ्यर्थियों के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर के कल आखिरी दिन लोगों में अधिक उत्साह दिखा गया। शिविर में नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। शिविर में लोगों ने राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वृद्ध व विधवा पेंशन, नए जल कनेक्शन, आधार पंजीकरण, ई श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया। इस शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मौके पर ही दस्तावेजों की जांच कर त्वरित प्रक्रिया पूरी की। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। बेस्ट उपक्रम ने आज नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की सुविधा के लिए 60 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। ये बसें मुंबई के 63 परीक्षा केंद्रों तक और वहां से सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम 5 बजे से 7 बजे के व्यस्त समय के दौरान चलेंगी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कोलकाता की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में हजारों प्रतिभागियों के साथ सामूहिक योग सत्र में भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू हुआ। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी, राज्यपाल आरएन रवि, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष प्रताप राव यादव और अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर लोगों में भरपूर उत्साह है। प्रधानमंत्री आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के 3 जहाजों दूनागिरी, संशोधक और अग्रे के शुभारंभ समारोह में भी शामिल होंगे। कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने इन प्लेटफॉर्मों का निर्माण किया है, जिनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को दर्शाता है। और ये समाचार शगुन हमने अपने मुख्य समाचारों में अपने श्रोताओं को पहले दे भी दिया है।
0: True.
1: तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार।

0: आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और शगुन के साथ। और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में आज गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उधर मुंबई में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। शहर का न्यूनतम तापमान 29 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और इसके अलावा कोलकाता में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका है। आज का न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। शगुन,
1: Chennai is likely to witness a partly cloudy sky. There is possibility of moderate rain or even thunderstorm. The minimum temperature will be around 28 degrees Celsius and maximum around 36 degrees Celsius. Bengaluru will experience a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be around 22 degrees Celsius, while the maximum temperature may reach 29 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky. Possibility of a rain or thunderstorm or dust storm. The temperatures are expected to range from 26 degrees Celsius to 39 degrees Celsius.

0: इससे पहले कि हम इतिहास को पन्नों को पलटें, अपने श्रोताओं को जानकारी दे दें शगुन के आज वर्ल्ड म्यूजिक डे यानी कि विश्व संगीत दिवस है। शायर अब्तलक बिनाम ने क्या खूब कहा है कि कभी मैं कोई तान छेड़ूं, कभी तुम कुछ गुनगुनाओ, ये जीवन संगीत बस यूं ही चलता रहे। जी हाँ, आज दिन की शुरुआत एक सुंदर सुरीले संगीत से हो जाए तो सारा दिन ही सुरीला बन जाता है और इतनी अच्छी तरोताजगी का एहसास हो जाता है कि लगता है कि उसे शब्दों में कैसे बयां करें। लेकिन बयां तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आज है वर्ल्ड म्यूजिक डे यानी कि विश्व संगीत दिवस जो हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। संगीत की विभिन्न खूबियों की वजह से ही विश्व में संगीत के नाम एक दिन है। ये संगीतज्ञों और संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। विश्व संगीत दिवस को फेटे डीला म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ म्यूजिक फेस्टिवल है। इसकी शुरुआत 1982 में फ्रांस में हुई और शगुन इसको मनाने का उद्देश्य अलग अलग तरीके से म्यूजिक का प्रोपेगेंडा तैयार करने के अलावा एक्सपर्ट और नए कलाकारों को एक मंच पर लाना भी है।
1: Well, Ravi, I'm yet to find a person who does not love listening to music. So World Music Day, this is a global tribute to the universal language of music and its power to unite people across cultures and backgrounds. Fête de la musique, the celebration this began in France in 1982, you told our listeners. So the core philosophy of World Music Day, it is inclusivity and participation. So this slogan, Fête de la musique or make music, it reflects this mission and, well, anyone, regardless of age, background or skill level, it is invited to perform or simply enjoy music. So events are there, you can enjoy, our listeners can enjoy, you can just listen into music even if you're at your home or you're driving around. So music, World Music Day, well, it's just amazing. The choice of June 21 is significant. It coincides with the summer solstice in the Northern Hemisphere, the longest day of the year, symbolizing light, energy and creative spirit.
0: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और आइए अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को और जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ।
1: Taking our listeners way back in time, 1788, the year 1788, New Hampshire officially ratified the United States Constitution, becoming the ninth and final state needed to bring the document into effect. 1893, the world's first Ferris wheel designed by George Washington Gale, it was opened to the public at the World's Columbian Exposition in Chicago. 1945 now, U.S. forces successfully captured Okinawa, Japan, and concluding one of the largest and the bloodiest battles of the Pacific Theater during World War II. 1997, the Women's National Basketball Association debuted with the first game played between New York Liberty and the

0: लॉस एंजलिस स्पार्क्स।
1: 1999 में आज के दिन कोसोवो लिबरेशन आर्मी KLA और कोसोवो शांतिक सैनिक बल के बीच विसैनिकरण समझौता संपन्न हुआ। 2002 में आज के दिन यूरोपीय यूनियन के 15 राष्ट्राध्यक्षों की सेविलिया स्पेन में बैठक शुरू हुई। 2005 में आज के दिन डोनाल्ड चांग हांगकांग के नए प्रशासक बने और 2008 में आज के दिन फिलीपींस में विनाशकारी तूफान फेंगसेन की चपेट में आने से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई। और अब समय हो गया है कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों या जन्मदिन के बात करने का। तो इस क्रम में आज सबसे पहला नाम है केशव बलराम हेडगेवार का, जिनका जन्म हुआ 1 अप्रैल 1889 को और निधन 21 जून 1940 को। केशव बलराम हेडगेवार भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपना समूचा जीवन हिंदू समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर हेडगेवार पहले क्रांतिकारी थे, किंतु बाद में हिंदू संगठनवादी बन गए। वे जीवन के अंतिम समय तक हिंदुओं को एकता के सूत्र में बांधने के लिए अथक प्रयत्न करते रहे। उन्होंने हिंदुओं के संगठन के लिए ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और केशव बलराम हेडगेवार अपने जीवन के प्रारंभ और मध्यकाल में क्रांतिकारी थे। उनका अरविंद घोष, भाई परमानंद, सुखदेव एवं राजगुरु आदि महान क्रांतिकारियों से संपर्क था और विद्यार्थी जीवन में उन्होंने वंदे मातरम आंदोलन चलाया था। और यही नहीं, सन 1921 के असहयोग आंदोलन में भी आपने हिस्सा लिया और एक साल जेल में बिताया।
0: Today we are remembering musician, well of course, Matthew Loveland Dennis. We are remembering Matthew Loveland Dennis, the pianist, singer, band leader, arranger, writer of music for popular songs, one of which you are listening in the background.

0: जयंतियों के क्रम में आज सबसे पहले जानकारी विष्णु प्रभाकर जी के बारे में, जो अपने साहित्य में भारतीय वागीमता और अस्मिता को व्यंजित करने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। आपका जन्म हुआ 21 जून 1892 को और आपने संसार से विदा ली 11 अप्रैल 2009 को। विष्णु प्रभाकर जी ने कहानी, उपन्यासकार, नाटक, जीवनी, निबंध, एकांकी, यात्रा वृतांत और कविता आदि प्रमुख विधाओं में अपनी बहुमूल्य रचनाएं की हैं। प्रभाकर जी ने आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाओं और प्रकाशन संबंधी मीडिया के प्रत्येक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। देश विदेश की अनेक यात्राएं करने वाले विष्णु जी जीवन भर पूर्णकालिक मसीहजीवी रचनाकार के रूप में साहित्य साधना में निर रहे और आपकी मुख्य रचनाओं में शामिल हैं अर्धनारीश्वर, आवारा मसीहा, क्षमादान और पंखहीन आत्मकथा आदि।
1: Today, listeners, we are also remembering Reema Lagu, who was so much more than just Bollywood's favorite mother, known for her maternal roles in some of Hindi cinema's biggest hits. Well, Reema Lagu also made her mark on the Hindi and Marathi stage and screen. So from Marathi theater and cinema to memorable roles in some of Bollywood's biggest hits, Reema Lagu was a force to reckon with.
2: Commissioner Sahab, aapne kabhi apna ghar jalte hue dekha hai? Usne dekha hai. आज वो मामा ठाकुर के पाप की नगरी को जला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं उसे रोक दूं? नहीं, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है।
1: Well, great. Listeners, today, well, it's Raymond Douglas Davies' birthday. The musician, he was the lead vocalist, rhythm guitarist and primary songwriter for the rock band The Kinks, with his younger brother Dave providing lead guitar and backing vocals as well. He also acted in, directed and produced shows for theatre and television.

0: Well known for focusing his lyrics on rock bands, English culture, nostalgia and social satire, he's often referred to as the godfather of Britpop. He was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame as a member of Kinks in 1990.
1: और अब बात करते हैं और जानकारी देते हैं अपने श्रोताओं को भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक और व्यंगकार मुद्रा राक्षस के बारे में, जिनका जन्म हुआ 21 जून 1933 लखनऊ में और निधन 13 जून 2016 को। मुद्रा राक्षस के साहित्य का अंग्रेजी सहित दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। वे अकेले ऐसे लेखक थे शगुन जिनके

0: सामाजिक सरोकारों के लिए उन्हें जन संगठनों द्वारा सिक्कों से तोलकर सम्मानित किया गया था। कहानी, कविता, उपन्यास, आलोचना, नाटक, इतिहास, संस्कृति और समाज शास्त्रीय क्षेत्र जैसी अनेक विधाओं में ऐतिहासिक हस्तक्षेप उनके लेखन की बड़ी पहचान है। सन 1951 से मुद्रा राक्षस की प्रारंभिक रचनाएं छपनी शुरू हुईं और करीब दो साल में ही वे एक चर्चित लेखक हो गए थे। ज्ञानोदय और अनुव्रत जैसी तमाम प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं का कुशल संपादन कार्य भी मुद्रा राक्षस जी ने किया था। उनकी लिखित मुख्य रचनाओं में शामिल हैं आला अफसर, दंड विधान, हस्तक्षेप, कालातीत और नारकीय आदि।
1: Well, today we are also remembering R.K. Shekhar, the music composer who worked mainly for Malayalam movies. He composed music for 52 films, 23 Malayalam, with 127 songs to his name, and was the music conductor for more than 100 films.
0: जी, और चलते चलते अब आज का विचार कि जिंदगी में ऐसे मित्र जरूर बनाने चाहिए जो दिल की बात को ऐसे समझें जैसे मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की लिखावट को समझते हैं।
1: How profound, so beautiful.
0: जी, तो इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और शगुन चोपड़ा को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की। नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे तीन टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। ब्रह्म कुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ ढापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है, जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान

0: प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रय तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
2: परीक्षा के सुरक्षित पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों समन्वयकों पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
4: धन्यवाद फरहत। NTA ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट UG पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्धि योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12,00,000 करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस।

0: हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
1: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: படைப்பு சென்னை வானொலி நிலையம்.
1: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ரவி கபூர். देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
3: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
2: अमेरिका में डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों से स्वस्थ जीवन शैली के लिए योगाभ्यास करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण किया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन।
3: विकसित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले आए INS अग्रे, INS दुनागिरी और INS संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।
2: इन पोतों का विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सन्मार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इजरायली हमलों के कारण हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन के भीतर ईरान के साथ अंतिम समझौता न होने पर जलमार्ग पर टोल लगाने की बात कही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। 2 वर्ष में एक बार होने वाला यह महोत्सव इस वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। समारोह में वृत्तचित्र, लघुकथा, एनिमेशन और AI फिल्में प्रदर्शित की गईं। आज रात एक भव्य समारोह के साथ इसका समापन होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, ओडिशा, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, रायलसीमा, कराईकल, केरल और माही में भी मंगलवार तक तेज वर्षा हो सकती है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है।

0: defeat in their previous match, India A will look to settle scores with Sri Lanka A in the final, with teenage sensation Vaibhav Suryavanshi in the spotlight once again. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता आज स्विट्जरलैंड में। सीखने की क्षमता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए नॉर्वे में प्राथमिक विद्यालयों में जेनरेटिव एआई उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी और फीफा विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग के कारण यह अब सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि योग हमें संतुलित जीवन जीने और मानसिक स्वास्थ्य के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग खोजने में मदद करता है।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: श्री मोदी ने योग को विश्व को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया।
2: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
1: देश के अलावा दुनिया में भी योग का जश्न देखने को मिला। सऊदी अरब में रियाद में कल 500 से अधिक प्रतिभागियों ने योग दिवस मनाया। कार्यक्रम में राजनयिकों, योगाचार्यों और स्थानीय लोगों ने भागीदारी की। सऊदी योग समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहमद अल सादी ने कहा कि योग लोगों को स्वस्थ और अधिक संतुलित जीवन शैली अपनाने में मदद करता है। कनाडा के टोरंटो में भी सरकारी प्रतिनिधियों, राजनयिकों और योगाचार्यों ने ओंटारियो विधानसभा परिसर में आयोजित योग कार्यक्रम में भागीदारी की। इस अवसर कनाडा में भारत के महावाणिज्य दूत ने कहा कि योग में सांस्कृतिक, भाषाई और राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने की अनूठी शक्ति है। ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया के नेतृत्व में विशेष योग सत्र हुआ। डेनमार्क में राजदूत मनीष प्रभात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फेडरिक्सन के नाम लिखा पत्र पढ़कर सुनाया। इसके अलावा अमरीका में डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों से स्वस्थ जीवन शैली के लिए योगाभ्यास का आग्रह किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके

0: अलर्ट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कोलकाता में हैं और उन्होंने नौसेना के 3 स्वदेशी पोतो INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का राष्ट्र को समर्पित किया। इस समय वे कार्यक्रम को संबोधित भी कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत, देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
1: इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल संरक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इजरायली हमलों के कारण होर्मोज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। उसने चेतावनी दी है कि संघर्ष न रुकने पर कोई उपलब्धि हासिल करना मुश्किल होगा। उधर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी 60 दिन के भीतर ईरान के साथ अंतिम समझौता न होने पर जलमार्ग पर टोल लगाने की बात कही है। वार्ता में के पक्ष का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और ईरान का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगैर खलीगाफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी स्विट्जरलैंड में होंगे। समझौते के तहत ईरान की अरबों डॉलर की फ्रीज की गई संपत्ति जारी की जाएगी। नॉर्वे के प्राथमिक विद्यालयों में जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों के उपयोग को लगभग पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा रहा है। बड़े बच्चों की शिक्षा में भी इनके उपयोग को सीमित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जोनास गेहस्टेरे ने कहा है कि AI के उपयोग से छोटे बच्चों की शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण चरणों के छूट जाने का खतरा बढ़ रहा है। नॉर्वे सरकार ने परीक्षा के प्रांतांकों में व्यापक गिरावट को देखते हुए 2024 में स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका उद्देश्य सीखने की क्षमता पर पड़ने वाले आत्मक प्रभाव को रोकना है। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। समाचार लिखे जाने तक भारत ए ने 3 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 55 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप की अगर बात की जाए तो जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स देश के ऐसे पहले नरेश बन गए हैं जो अपने व्यक्तिगत कर भुगतान का ब्योरा सार्वजनिक करेंगे। ये विवरण बृहस्पतिवार को साझा किया जाएगा। ब्रिटिश राजशाही के प्रशासनिक कार्यालय बकिंघम पैलेस ने कहा है कि ये पहल पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। 2 वर्ष में एक बार होने वाला ये महोत्सव इस वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। समारोह में वृत्तचित्र, लघु कथा, एनिमेशन और AI फिल्में प्रदर्शित की गई। विश्व ऊंट दिवस के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में श्री शेखावत ने कहा कि ऊंट केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि राजस्थान और गुजरात की संस्कृति और परंपरा का भी प्रतीक हैं। उन्होंने ऊंट को मरुस्थल का जहाज बताते हुए इसके संरक्षण का आह्वान किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता की रेड रोड पर योगाभ्यास किया। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता आज स्विट्जरलैंड में। सीखने की क्षमता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए नॉर्वे में प्राथमिक विद्यालयों में जेनरेटिव एआई उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी और फीफा विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में

0: ஒலித்த அந்த பாடலோடு நிறைவு பெற்றது சுகமான ராகங்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜாகிருதி சர்மா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पोत रक्षा क्षेत्र में भारत की

0: आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं।
1: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आईएनएस दुनागिरी, अग्रय और संशोधक का नौसेना में शामिल होना भारत की समुद्री क्षमता के विकास में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पड़ाव साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये तीनों पोत अब भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा आज हो रही है। ये परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
2: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले तीन टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। अमरीका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इसराइली हमलों के कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 12 ओवर में 2 विकेट पर 144 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi today commissioned 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata today. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers,

0: திலும் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है, और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने अपनी पत्नी के साथ बीच रोड पर एक कार्यक्रम में योग किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ करेंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 41 ओवर में 5 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलीबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युग चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
3: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
4: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। किताब ते आकाशवाणी समाचार मुंबई।
0: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।

0: पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि DPR बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है NTA के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि CBSE के शेष परीक्षा

0: परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
1: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान के संसद अध्यक्ष M.B. कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी नेरम 2:30।

0: पॉलिटिकल साइंस।
1: इसके साथ ही श्रोताओं, आज हम विनीता सोरेन को भी याद कर रहे हैं, जो भारत की पहली आदिवासी महिला हैं जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रचा था। और आपको बता दें कि झारखंड के सरायकेला जिले के केसोरासो गांव से उनका जन्म हुआ था, जहां पर वो एक साधारण किसान परिवार से आने वाली थी। और इसके बाद भी उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के बल पर पर्वतारोहण के क्षेत्र में विशेष पहचान बताई। और विनीता सोरेन ने प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कई अभियानों में भाग लिया। वर्ष 2012 में उन्होंने इको एवरेस्ट स्प्रिंग अभियान के तहत 26 मई 2012 को माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया था।
0: लियोन यूरिस पास्ड ऑन दिस डे इन 2003। ही वाज अ बेस्ट सेलिंग अमेरिकन ऑथर ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन, बेस्ट नोन फॉर हिज स्वीपिंग एक्सटेंसिवली रिसर्च्ड नॉवेल्स दैट टैकल्ड मेजर 20th सेंचुरी कॉन्फ्लिक्ट्स, द होलोकॉस्ट एंड द मिडिल ईस्टर्न एंड आयरिश हिस्ट्री। हिज वर्क ऑफन एक्सप्लोर्ड रेजिलियंस एंड आइडियोलॉजीज, विद हिज स्टोरीज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड हेरिटेज।
1: इसके साथ ही आज हम मुद्रास का वास्तविक नाम उन्हें याद कर रहे हैं, सुभाष चंद्र था। उनका जन्म आज ही के दिन 1933 में लखनऊ में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक और व्यंग्यकार थे। और उन्होंने अपने वैचारिक दृष्टि, सामाजिक सरोकार और मान्यताओं पर तीखी टिप्पणी की, और इसके लिए वे विशेष रूप से जाने जाते थे। उन्होंने साहित्य, रंगमंच, पत्रकारिता और सांस्कृतिक विमर्श के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने आकाशवाणी और पत्रकारिता से भी जुड़कर कार्य किया। उनके प्रमुख उपन्यासों में अचला, शांति भंग और हम सब मनसाराम उल्लेखनीय है। नाटकों में उन्होंने तेंदुआ, मर्जीवा और आला अफसर विशेष रूप से चर्चित रहा, जिसके बाद उन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, भारतेंदु सम्मान और यश भारतीय सम्मान शामिल है।
0: Prince William, William Arthur Philip Louis, celebrates his birthday today. He is, of course, the heir apparent to the British throne. As the eldest son of King Charles III and Diana, Princess of Wales, he stands first in line to become the King of the United Kingdom and 14 other Commonwealth and realms, and also Karishma, Group Captain, formerly Wing Commander Abhinandan Vardhaman, also celebrates his birthday today. He is an officer in the Indian Air Force, IAF, who became a national hero in 2019. And Vardhaman, during an aerial dogfight, he courageously shot down a Pakistani F-16 fighter jet before his own MiG-21 Bison was hit, forcing him to eject and land in Pakistan. His time in enemy captivity and his composed, resilient demeanor upon his release captivated the Indian public and highlighted military bravery. And also, Divakar Banerjee was born on this day in 1969. He is a highly acclaimed Indian film director, screenwriter, producer and advertisement filmmaker. He is widely recognized for redefining Indian independent cinema and bringing a sharp, realistic portrayal of the Indian middle class to Hindi films. Before joining the film industry, he was a successful ad filmmaker and copywriter. He eventually left advertising to co-found the production company Watermark, and he subsequently founded his own independent production house, Divakar Banerjee Productions.
1: इसके साथ ही श्रोताओं, आज हम जीत सिंह नेगी को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। उन्हें उत्तराखंड का पहला लोकप्रिय लोक गायक माना जाता है। उन्होंने गढ़वाली लोक संगीत को नई पहचान दिलाने और उसे देश विदेश तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी मधुर आवाज और लोक जीवन से जुड़े गीतों ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया। जीत सिंह नेगी ने आकाशवाणी के माध्यम से अपने गीतों को व्यापक पहचान दिलाई। उनके प्रसिद्ध गीतों में तैके लानी रहना, बेडू पाको, तमाम ऐसे गाने शामिल हैं। वे केवल गायक ही नहीं बल्कि गीतकार और संगीतकार के रूप में सम्मानित भी थे। उनके योगदान के कारण गढ़वाली लोक संगीत को नई पीढ़ी में लोकप्रियता मिली और इसके चलते उन्हें कई सम्मान भी मिले, जिसमें उत्तराखंड गौरव सम्मान और गढ़वाली लोक संगीत के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया।
0: Yes, and Jean-Paul Sartre was born on this day in 1905. He was a towering 20th century French philosopher, playwright, and novelist.

0: Good evening, listeners, and welcome to this yet another fresh edition of Market Mantra, the program in which we bring to you all the important economic news of the day. And besides news, today being Sunday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on mutual fund and related matters. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2371-7117 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Your anchors for today, Subodh Mishra and myself, Sarabjit Kaur.
1: Dhanyavad Sarabjit aur namaskar shrotaon, karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7117 और 2371-7106. श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी. आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: जी धन्यवाद.
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
0: यूएस एंड ईरान टॉक्स टू स्ट्रेंथन इंटरिम डील बिगिन इन स्विट्जरलैंड. इन बुलियन मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस एक्सटेंड डाउनवर्ड स्लाइड लास्ट वीक. And domestic investors to focus on macroeconomic data and geopolitical developments for cues next week.
1: Antrim samjhote ko mazboot banane ke liye America aur Iran ke beech Switzerland mein baatcheet shuru. Sarafa bazaar mein pichle hafte bhi sone aur chandi mein giravat jari aur agle hafte desh ke niveshkon ka focus rahega aarthik aankdon aur vaishvik ghatnaon par.

0: And listeners, before we go any further in the program, may we just remind you once again that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सरबजीत
0: जी.
1: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों और अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते को मजबूत करने के उद्देश्य से आज स्विट्जरलैंड में महत्वपूर्ण वार्ता शुरू हुई. इन वार्ताओं में कतर और पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं. अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वैंस कर रहे हैं, जबकि ईरान की ओर से स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची बातचीत में शामिल हैं. ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब तेहरान ने दावा किया है कि इसराइल द्वारा लेबनान पर जारी हमलों के कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है. हालांकि अमेरिकी सेना का कहना है कि यह महत्वपूर्ण मार्ग सभी जहाज़ों के लिए खुला है. ईरानी सरकार के अनुसार स्विट्जरलैंड में ईरानी वार्ता दल और कतर के मध्यस्थों के बीच एक बैठक हुई है.
0: एंड आवर फर्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली, यशपाल जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछे. यशपाल जी, आप सुन पा रहे हैं हमें?
2: हाँ जी, हाँ जी.
0: सवाल पूछे.
2: गुड इवनिंग एवरीवन.
0: जी, गुड इवनिंग.
2: माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मल्टी एसेट एलोकेशन फंड. तो मैंने 2 साल पहले बजाज मल्टी एसेट में इन्वेस्ट किया था, उसका रिटर्न तो ठीक है, 10% के करीब है. और उसके बाद मैंने 1 by 1 तीन और ले लिए विद इन मतलब लास्ट 6 मंथ में. एक निपॉन इंडिया का है, एक फ्रैंकलिन इंडिया, और अभी रिसेंट DSP लिया है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. तो थोड़ा सा एडवाइस लेनी थी कि ये चारों फंड में आई कैन कीप इट, और इनमें से कोई दो

0: कंटिन्यू करूँ और दो निकाल दो से एग्जिट कर लूँ और दो कौन से बेस्ट रहेंगे इनमें से, कैन यू एडवाइस प्लीज, थैंक यू.
1: यशपाल जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि आपने एक मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी के ही चार फंड्स में अलग अलग में निवेश कर दिए, तो देखिए आमतौर पे क्या होता है कि जो ज़्यादातर फंड्स होते हैं एक कैटेगरी के अंदर, उनमें बहुत संभावना होती है कि उनके जो स्टॉक्स है वो काफ़ी सारे कॉमन हो. अगर आप इनका एक मंथली फैक्ट शीट निकाल के देखेंगे जहाँ पे इनका जो पोर्टफोलियो होता है, आप ये पाएंगे कि बहुत हद तक एक ही तरीके के स्टॉक्स आपके हर चारों फंड्स में है. इसको हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो ओवरलैप. तो मेरी सलाह ये रहेगी कि बजाय इसके कि आप चार अलग अलग फंड्स में निवेश करें एक ही कैटेगरी के, आप खाली दो फंड्स चुन सकते हैं जिनका थोड़ा एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, जो नए ना हो, कम से कम उनमें कुछ 3 से 5 साल का, 3-4 साल का उसमें एक ट्रैक रिकॉर्ड हो, और उसके हिसाब से आप दो फंड्स का चुनाव कर सकते हैं. बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं ये 3 प्रकार के एसेट क्लासेस में निवेश करते हैं, जो कि आमतौर पे इक्विटी, डेट, फिक्स्ड इनकम और साथ में कमोडिटीज़ रहते हैं. कमोडिटीज़ में ज़्यादातर गोल्ड रहता है, तो एक आपके पोर्टफोलियो को एक थोड़ा स्टेबिलिटी भी देता है.
2: जी अगले कॉलर है उत्तर प्रदेश से राजेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
3: सर मेरा एक सवाल है.
2: जी
3: मैं राजेंद्र, मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ और मैं SIP करना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड के हिसाब से. मेरा SIP नहीं होता है अंगूठा लगाने की वजह से, इसका क्या उपाय हो सकता है कि मैं SIP कर सकता हूँ पर मंथ?
1: राजेंद्र जी आपको देखिए आजकल तो ऑनलाइन भी SIP हो जाती है, काफ़ी सारी फिनटेक ऐप्स आ गई, आप अपने किसी रिलेटिव की सहायता से या फिर जो आप है एक AMFI की वेबसाइट पर जाकर के वहाँ पे आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक वहाँ पे आपका पिन कोड डाले और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो भी है नियरेस्ट वहाँ की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी. और मेरी समझ में इसके वजह से नहीं रुकना चाहिए, अगर आपका बैंक में खाता एक ऑलरेडी है और आपके पास ज़रूरी दस्तावेज़ है जो KYC के लिए होते हैं हमारे पास, अगर आपके पास एक आधार है, एक पैन कार्ड है, तो उसके बाद आजकल तो सारा डिजिटली हो जाता है, तो ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए. आप एक दफ़ा मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप या तो AMFI की वेबसाइट पे किसी की सहायता लेकर के वहाँ से डिटेल्स निकलवाएं और उनको संपर्क करें.
2: हाँ कर, क्योंकि हम भी जब निवेश हमने भी जब शुरू किया, जब ऑनलाइन किया है, तो हमें भी कहीं हस्ताक्षर करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, कभी साइन नहीं करना पड़ा, इसलिए कभी अंगूठा लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी को.
1: जी जी वो ज़्यादातर तब होता है जब हम ऑफलाइन तरीके से जाते हैं, जब पूरा पेपर वर्क करते हैं, वहाँ पे फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, बट आजकल डिजिटली सारी चीज़ें संभव है और अगर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो मेरी समझ में उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए.
2: जी
4: जी लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली. केशव जी सवाल पूछें.
5: हेलो नमस्कार जी.
4: जी नमस्कार
5: जी, मेरा एक सवाल है और एक आपसे शिकायत, समझ लीजिए जानकारी लेनी है. पहला सवाल तो ये है कि आप कोई नया अगर म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगाना चाहे तो इसको बैंक के थ्रू लगाना चाहिए कि आप कोई एजेंट को हमें पकड़ना पड़ेगा या इससे राय लेनी पड़ेगी? और जैसे आप कार्यक्रम, दूसरा सवाल ये है कि जैसे आप कार्यक्रम खत्म होने के बाद बोलते हैं कि ये आकाशवाणी की जिम्मेदारी नहीं है, आप एक्सपर्ट से राय लें, हमारी जिम्मेदारी नहीं है. जब हमारे एक्सपर्ट आप लाते हैं, उनसे हम सवाल करते हैं, उन्हीं से ही हम राय लेते हैं, तो ये कन्फ्यूजन क्यों आपने लास्ट में डालते हैं? इसके बारे में जरा सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप कोई सवाल ऐसा होता है जो आपको नहीं बताना होता और एक्सपर्ट को बताना होता है, पर आप एंकर लोग ही आप उसका जवाब देते हैं. धन्यवाद
2: जी. पहले इनके दूसरे सवाल का जवाब देते हैं, क्योंकि ये निवेश का मसला होता है और रुपए पैसे से संबंधित बात है, और इसमें हर किसी का अपना फैसला होता है, क्योंकि वो पैसा उसका होता है, इसलिए जिम्मेदारी उसी को लेनी पड़ेगी. आप अपनी समझ से हमारे एक्सपर्ट जो कुछ बताते हैं आप उससे अपनी राय कायम करके अपनी समझ से अपनी जिम्मेदारी से निवेश कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि किसी से तो फिर आप किसी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के पास जाकर उससे सीधे सलाह लेकर आप निवेश कर सकते हैं. जी
1: केशव जी, जो आपका पहला सवाल था कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए क्या बैंक के ज़रिए करना बेहतर है या किसी म्यूचुअल फंड एजेंट के ज़रिए करना बेहतर है, देखिए मैं आपको बताऊंगा दोनों तरीक़ों से. अगर आप जैसे जब निवेश करेंगे तो वहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व होता है, जो बैंक है, जो म्यूचुअल फंड एजेंट है, ये केवल एक म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए आपके लिए एक फैसिलिटेशन करेंगे, जो भी सारा पेपर वर्क है और जो एक बेसिक राय होती है कि आपको किस फंड में निवेश करना

0: चाहिए उसके बारे में बताएंगे। दोनों ही जगह से सेम रहेगा। यहाँ पे ज़रूरी है कि आप जिससे राय ले रहे हैं, जिसकी सहायता आप ले रहे हैं, उस आदमी का, उस पर्सन का कितना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, या फिर उन पे आपको कितना भरोसा है। कई दफ़े ऐसा होता है कि आपकी जान पहचान में कोई होते हैं जिनकी बातों पे आपको काफ़ी भरोसा होता है। तो बेहतर ये रहेगा कि आप या तो किसी ऐसे व्यक्ति से मिले, चाहे आप बैंक जा कर के, अगर बैंक में आपका कोई ऐसा मैनेजर है जो कि जिनकी बातों पे आपको बहुत यकीन है, आपने पहले भी देखा है कि उनकी चीज़ें सही रहती है, आप वहाँ से भी करा सकते हैं। वो रेगुलर प्लान में आपका निवेश कराएंगे। और अगर आप म्यूचुअल फंड एजेंट के थ्रू जाते, वहाँ से भी सेम रहेगा। बाकी जो तीसरा तरीका है, तीसरा तरीका ये है कि आप खुद भी निवेश कर सकते हैं डायरेक्टली। फ़र्क ये रहेगा दोनों में, जब आप खुद निवेश करेंगे आपको एक डायरेक्ट प्लान मिलेगा, और अगर आप बैंक या म्यूचुअल फंड एजेंट के जरिए करेंगे वहाँ पे आपको रेगुलर प्लान मिलेगा। दोनों में फ़र्क एक थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो का होता है। देखिए, जब भी आप निवेश करेंगे तो बैंक के जरिए करेंगे, बैंक को और म्यूचुअल फंड एजेंट, उन लोगों को थोड़ा सा कमीशन मिलेगा जिसका असर आपके खर्चे पे पड़ेगा, एक्सपेंस रेशियो पे। ये आपको कुछ अलग से नहीं देना पड़ेगा, ये आपकी डेली एनएवी में एडजस्ट होता है। बट देखा गया कि एक बहुत ही लंबे समय में इसका एक कंपाउंडिंग के जरिए थोड़ा सा अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है। पर वहीं पर अगर आप डायरेक्ट प्लान में जाते हैं, अगर आप खुद किसी फिनटेक ऐप से या किसी ऑनलाइन वेबसाइट से एमएफ सेंट्रल के जरिए निवेश करते हैं, तो वहाँ पर जो भी सारी एक बेसिक फॉर्मेलिटीज़ है, और फॉर्मेलिटीज़ से ज़्यादा ये सब चीज़ें तय करना कि आपको किस फंड में निवेश करना चाहिए, किस फंड में निवेश नहीं करना चाहिए, वो बताने वाला कोई नहीं होएगा। तो अगर तो आप इन सब चीज़ों की जानकारी रखते हैं तो आप इसके ज़रिए जा सकते हैं। नहीं तो शुरुआती तौर पे बेहतर रहेगा कि आप किसी की सहायता लें और उनसे निवेश करें। रेगुलर प्लान के ज़रिए ही सही, आप म्यूचुअल फंड एजेंट या बैंक के थ्रू आप उसमें निवेश जारी करें।
1: Listeners, you are tuned to Market Mantra, the program which brings to you all the economic news. And today being Sunday, we entertain queries on mutual funds. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2371-7117 and 2371-7106, and do prefix the code 011. We have in our studios today mutual fund expert Akar Rastogi.
2: और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और देखें सोने और चांदी का क्या हाल रहा। पिछले हफ्ते सराफा बाज़ार में सोने और चांदी की कीमतों पर लगातार दबाव बना रहा। फेडरल रिज़र्व ने बुधवार को ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन उनके आधे से ज़्यादा नीति निर्धारकों ने संकेत दिया है कि इस साल आगे चलकर दरों में वृद्धि हो सकती है। ताज़ा आर्थिक अनुमानों में सख्ती की वजह से अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है और डॉलर इंडेक्स 101 पर पहुँच गया। अमेरिका के ट्रेजरी यील्ड्स में भी बढ़त दिखाई दी, इसकी वजह से सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। एमसीएक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोना वायदा पिछले सप्ताह 2.2% गिरकर 147,203 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। जुलाई अनुबंध के लिए चांदी वायदा में 5.3% की गिरावट रही और ये इस हफ्ते 2,33,185 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। अगस्त वायदा का कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स 1.5% गिरकर $4,173 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ, जबकि जुलाई वायदा की चांदी 4.5% गिरकर $64.91 प्रति ट्रॉय आउंस पर आ गई।
1: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said India and the European Union are expected to sign their long-awaited free trade agreement by December this year, with the pact likely to come into force between February and March next year. Speaking at an event in Mumbai today, Mr. Goyal said the agreement will provide Indian businesses access to almost the entire European market at near zero duty levels, significantly boosting export opportunities.
2: और अगले कॉलर है दिल्ली से वीरेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
3: नमस्कार।
2: नमस्कार
3: सर, मैंने SBI में म्यूचुअल के थ्रू म्यूचुअल फंड खोला था 2.5-3 महीने पहले, लेकिन अभी तक वो पैसा काटना शुरू नहीं किया। अभी मेरे दोनों अकाउंट वहीं पर हैं, सारे पेपर्स वगैरह सब मैं दे आया हूँ, तो क्या कारण हो सकता है कि वो पैसा काटना बंद हो गया?
0: वीरेंद्र जी, आपको जो जिस एजेंट के ज़रिए आपने निवेश करा था, या फिर आपने अगर किसी बैंक में जाकर के किसी रिलेशनशिप मैनेज के ज़रिए करा था, तो आप उनको तुरंत संपर्क करिए। जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पर एक आपका जो मैंडेट होता है वो पूरी तरीके से ठीक

0: एफ ए रूट से 18,780 करोड़ रुपए का निवेश आया है, जो अक्टूबर 2025 के बाद का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। डेट जनरल लिमिट श्रेणी में 8,104 करोड़ रुपए और वीआरआर में 4,028 करोड़ रुपए का निवेश आया। आकार, ये जो एफआईआई के हम एफपीआई के आंकड़े जो देख रहे थे पहले, चलो शेयर बाज़ार में तो हमें पता है कि स्टॉक मार्केट से उनके पैसे निकल ही रहे थे, लेकिन ये जो नया स्टेप हमने देखा जो सरकार ने अभी उठाया था, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए सिक्योरिटीज़ के लिए कैपिटल गेंस में रिलैक्सेशन दी है उनको और लिमिट हटाया गया, इससे क्या हमारा बॉन्ड मार्केट भी विदेशी निवेशकों के लिए काफ़ी आकर्षक बन गया है और ये अभी कायम रहेगा?
1: जी देखिए, आकर्षक तो डेफिनेटली बन गया है क्योंकि काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं, एंड बाकी कितना कायम रहता है उस पर थोड़ा सा कमेंट करना भी मुश्किल रहेगा
0: क्योंकि अभी जापान का खतरा भी है।
1: जी जी जी, तो वो देखना पड़ेगा।
0: तो क्या जापान में आगे अगर फिर ब्याज दरें बढ़ी तो फिर से पूरी दुनिया में हम देखेंगे पूंजी इधर से उधर होने के कुछ संभावनाएं?
1: जी देखिए, वो भी है, और वहीं पे एक अभी फेड की भी अगर जो अभी लेटेस्ट मीटिंग थी तो वहाँ पे काफ़ी हॉकिश टोन था और उसमें ये बोला गया है कि 2026 में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक रेट हाइक तो होगा ही, और अभी पिछली जो हमारी आरबीआई की भी मीटिंग थी उसमें भी चीज़ें थी, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा संभल कर देखना पड़ेगा। बट एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैं कहूँगा कि उनको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो आपका फिक्स्ड इनकम का पैसा भी है उसके लिए वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड फंड में निवेश करना उनके लिए बेहतर रहेगा।
2: All right, now let's take a look at how the markets are expected to show up next week. Domestic markets are expected to focus on economic releases, geopolitical developments, commodity prices, trends in foreign investment flows, and movements in the rupee for cues during the upcoming holiday shortened week. Market participants will track the core industries data scheduled to be released tomorrow. Meanwhile, stock markets will remain closed on 26th of June on account of Muharram. In the United States, the Personal Consumption Expenditures Price Index for May and the third estimate of the first quarter GDP print will be closely watched. Stronger than expected data could reinforce the Federal Reserve's hawkish stance and influence global market sentiment. Akar, we've always been repeatedly saying that when you invest, forget, don't watch it very, very closely. You just said this a short while ago in this program also. So what is the importance of time horizon when we are investing in the mutual fund industry? What's your advice to our listeners on this?
1: So I would like to talk about two things parallelly. One is a time horizon, and then one is choosing the right asset class. Because, you know, quite often what happens is the time horizon is very less with the investors. So it's like just maybe 1 or 2 years, and they end up, investing in an equity product, which is not a suitable product for a 1 or 2 year horizon. So one is that you have to first decide on a time horizon and then choose the right asset class. Because unless you're sure about a time horizon, you won't be able to decide on the right asset class.
2: We'll continue this discussion again. Meanwhile, let's connect with our next caller from Bhopal. Shankar ji, sawal poochhe.
3: Namaste.
2: Ji, namaste.
3: Sir, mera sawal hai. Hamari investment jo purane the, wo sab return kaafi high the. 20-22%, even 24% tak the CAGR mein. Now they are tapering down slowly, coming down to 18, 16 or even 15% some cases. So this trend will continue for some more time, or you expect them to do better in longer term? Because we don't want to lose money in terms of inflation, and we cannot invest in properties because it is very difficult for small investor to switch from equity to property or whatever, because it's not very easy to do that. So will the equity investment with the fresh investment which will be going now in the form of SIP will be better than, will be covering our return in terms of inflation? And like banks are somehow okay, but they are still very low. Equity will give better return in longer term. What is your view, sir? Thank you.
1: Yeah, definitely, Shankar ji. First, I would like to address your concern on CAGR coming down from 22-24% to now 18%, 15%. So, without knowing about the exact investment or the market cap allocation,

0: location, it would be slightly difficult, but at the same time, as we have been talking, that there was a bull run in the year 2021, 2022, 2023. After COVID, we have seen the markets going extremely up because I mean, that was one of the reasons that you were getting very high CAGR. And if you look at the last 1 year or 1.5 years, the markets haven't been doing well. In fact, if we look at the year-to-date returns, the last 6 month returns are like minus 9-10% because of the tensions in Western Asia, and that is one reason which has brought down your trailing CAGR returns. So that is the reason behind why they are coming down. But at the same time, you were saying that whether you should continue with your SIPs into equity mutual funds and whether they'll be able to get good returns in the future. So definitely yes. In fact, I would say since the markets are down right now, if you would be investing in the markets right now, it would be like buying cheap. You would be able to accumulate more units. And generally, over a longer period of time, equities does well over inflation, and that is the only asset class which can help you, get inflation beating returns. So go ahead and invest in them.
1: जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से वरुण देव. स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
2: सर, मुझे पूछना है ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए जो म्यूचुअल फंड सीप में कौन सा फंड बेहतर रहेगा. एक दिक्कत आती है जब हम सीप स्टार्ट करते हैं मार्केट गिरता है और वो फंड का पैसा लेना वो बंद कर देता है, तो उस सिनारियो देखते हुए कौन सा बेटर रहेगा.
0: वरुण जी, अभी जो इंटरनेशनल फंड्स है उनमें ऑलमोस्ट काफ़ी सारे फंड्स में अभी पैसे लेने बंद करे हुए हैं. उसके पीछे जो रीज़न है वो एक है कि आरबीआई ने कुछ साल पहले एक मतलब कुछ साल पहले नहीं, हमेशा से रही है, एक इंडस्ट्री वाइड लिमिट होती है कि जो म्यूचुअल फंड्स है वो फॉरेन सिक्योरिटीज़ में कितना निवेश कर सकते हैं. और कुछ साल पहले वो लिमिट ऑलमोस्ट इंडस्ट्री की ब्रीच हो गई थी. उसके बाद एक आरबीआई ने एक और लिमिट बताई जो कि पर फंड हाउस होती है, और जिन जिन फंड हाउसेज में वो लिमिट अभी भी बची है उस वजह से वो लोग कभी वहाँ पर खोलते हैं सब्सक्रिप्शन और कभी बंद कर देते हैं. जब बंद, बेसिकली जब भी वहाँ से रिडिम्शन होती है, जब भी वो लिमिट में एक हेडरूम बनता है, तो वहाँ पर सब्सक्रिप्शन खोल देते हैं. तो अभी कुछ ही फंड्स है जहाँ पर आप जो इंटरनेशनल फंड्स है जो अभी भी एसआईपीज ले रहे हैं, फ्रेश एसआईपीज ले रहे हैं. लमसम में एक हमारे पास एक लौता फंड है, बड़ौदा का बीएनपी एक्वा थीम्ड फंड है, और बाकी कुछ और 10-11 फंड्स है. तो कोशिश करिए जब भी आप कोई सा ये जो इंटरनेशनल फंड है जिसमें अभी खुली है, जिसका मैंडेट जितना ब्रॉड हो सकता है और ना कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन स्पेसिफिक हो, उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए. वो जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड आपको लगे उसका चुनाव करके आप उसमें निवेश करिए.
3: India will host the 11th BRICS Energy Ministers meeting in Gurugram, Haryana on the 25th and 26th of this month under its BRICS Chairship 2026. The meeting will focus on three key priorities: energy security and sustainability, energy access and equity, and technology and innovation. Energy ministers and senior officials from all 11 BRICS member countries will participate in the meeting.
1: आज वक्त इतना ही है सरबजीत, खबरें और भी थी, कॉलर्स कुछ और भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आज हमें सिलसिला यहीं रोकना पड़ेगा. आकार कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
0: जी धन्यवाद.
3: लिसनर्स, बिफोर वी रैप अप टुडेज शो, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. यूएस एंड ईरान टॉक्स टू स्ट्रेंथन इंटरिम डील बिगिन इन स्विट्जरलैंड. In bullion market, gold and silver prices extend downward slide last week, and domestic investors to focus on macroeconomic data and geopolitical developments for Qs next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत

0: मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघजी कर रहे हैं। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब ईरान ने कहा कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया गया। वहीं अमरीकी सेना का कहना है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दोनागिरी संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। नीट यूजी की पुनः परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई। परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित हुई। इसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। भारत ने FIH महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। ऑकलैंड में फाइनल में आज भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी। उधर दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Talks between the U.S. and Iran.

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே விஷால் சர்மா. अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी कर रहे हैं। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने कहा है कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया गया है। वहीं अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रह

0: राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योग अभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित हुई। इसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 4 विकेट पर 95 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत ने FIH महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में ऑकलैंड में आज भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर दूसरी बार यह खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। लाल रेम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने टूर्नामेंट में टीम के असाधारण प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: திரைகாணம் நிறைவு பெற்றது. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है। इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में

0: आयोजित की गई।
1: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से 2-स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7,00,000 पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या 0 सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने के 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता

0: लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NEET UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: रहमान चौपाल की तरफ गए थे, आते ही होंगे।
1: किसे पूछते हैं सरकार?
2: रहमान मियां के नाम कचहरी का नोटिस है, क्या तुम ही हो रहमान?
1: जी हाँ जमादार साहब, क्या लिखा है इसमें आप ही बता दें।
2: वीर बाहू सिंह जिमीदार साहब ने इजाफा लगान का दावा दायर किया है, तुम्हें पेशी पर पहुंचना है कचहरी में इसी महीने की 25 तारीख को।
1: जी बहुत अच्छा,
2: अभी 3 हफ्ते हैं। और हाँ ये लो दस्तखत कर दो, ये लो कलम।
1: जी
3: रहमान बकलम खुद, ये लीजिए।
2: खूब, तुम तो पढ़े लिखे मालूम होते हो।
1: बस इतनी ही उर्दू आती है जनाब।
2: अच्छा तो मैं चलता हूँ,
1: कुछ देर सुस्ता लीजिए, शरबत पीकर जाइएगा।
2: नहीं नहीं अभी मैं जल्दी में हूँ, 2-3 और गांव के संबंध भी देने।
1: सलाम जमादार साहब।
2: सलाम।
0: अब तुम वकील करोगे बेटा?
3: और कर ही क्या सकता हूँ अम्मा, इधर फसल खराब हो गई, उधर से ये खर्चान पड़ा है।
0: इतने रुपए कहाँ से लाओगे?
3: कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा अम्मा।
0: बहू से

0: पूछ देखो, शायद उसके पास कुछ रुपए निकल आए।
1: अम्मा, मेरे पास चार चूड़ियां थी, वो पिछले साल लगान अदा करने के वक्त गिरवी चली गई। उधार ले लू ना कहीं से।
2: उधार किससे ले लू? महाजन ज्यादा सूद लेते हैं, जमानत भी लेते हैं।
1: घर में ले देकर ये दो बैल हैं।
2: बैलों के बगैर किसान क्या खेती करेगा?
1: फिर इस गाय ही को
3: बहू।
2: तुम जानती हो मुझे जान से भी बढ़कर है।
1: तो फिर करोगे क्या?
2: कुछ तो करना ही होगा।
1: या अल्लाह।

0: समझ गए, तुम गहू बेचना ही नहीं चाहते, यहाँ बेकार हम लोगों के साथ मजाक कर रहे हो।
1: बेचना न होता तो इसे साथ लिए गांव गांव न घूमता।
2: अरे लाला छोड़ गया को, भगैया मुझे थमा, ये ले 30 रुपए नगद है, ला रसीद। अरे
1: क्या सोचा ला, तो
0: नहीं
3: आइए
0: आइए मुख्तार साहब, सलाम
2: सलाम।
0: हुजूर ये शख्स अपनी गाय बेचना चाहता है, मैंने 32 रुपए दाम लगाया लेकिन ये हामी नहीं भरता।
2: हुजूर 34 तो मैं दे दूं, ये बेचने वाला तो बने।
4: गाय तो तुम्हारी मोहिनी रूप है।
2: हुजूर ये देखिए, गर्दन भारी पुट्ठे और दूध से भरे हुए थन। हुजूर
4: बाबा बछड़ा भी सुंदर है।
2: हुजूर दाम लगाएं, गाय आपकी।
4: क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो?
2: रहमान हुजूर, पचौली में रहता हूँ, पास के गांव में।
4: दूध देती है?
2: हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर दूध लीजिए, इतनी सीधी हुजूर की बच्चा भी दूले। बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं हुजूर, पर क्या मजाल की सिर भी हिलावे।
4: क्या दाम मांगते हो?
2: 50 रुपए हुजूर।
4: हमें तो 35 का माल जचता है।
2: माल को देखते हुए 50 मैंने ठीक ही मांगे हैं हुजूर, इसके साथ की गाय इधर 50 गांव में नहीं है हुजूर।
4: देखो अब सौदा तय करने की बात करो, हम 35 से ज्यादा नहीं देंगे, बोलो हाँ या नहीं।
2: क्या कहे हुजूर, चलिए गाय आपकी हुई, आपके साथ चलकर आपके घर पहुंचा देता हूँ। चलिए हुजूर।
4: रहमान एक बात बताओ, तुमने 40 में गाय क्यों नहीं दी थी?
2: हुजूर आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे। ये सब कसाई हैं, इनके हाथ में 50 रुपए में भी कभी नहीं बेचता। आप बड़े मौके से आ गए हुजूर, नहीं तो ये सब जबरदस्ती गांव को उनसे छीन ले जाते हुजूर।
4: तुम्हें रुपयों की कोई खास जरूरत नहीं थी?
2: थी सरकार, बड़ी विपत में पड़ गया हूँ, रुपयों की जरूरत नहीं होती तो घर की इस लक्ष्मी को कभी नहीं बेचता हुजूर।
4: लेकिन वो लोग रुपए भी ज्यादा दे रहे थे।
2: इसे अपने हाथों से पाला है हुजूर, कसाईयों के हाथ में कैसे बेच देता।
4: गाय को तुमने प्यार से रखा है वो तो दिखता है।
2: सरकार इसे जितनी खली देंगे ना उतना ही दूध देगी, भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। सरकार
4: तुम फिक्र मत करो, इसकी खिलाई पिलाई में कसर ना होगी।
2: हुजूर एक अर्ज और है।
4: क्या?
2: अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा, इसे मारे पीटे नहीं हुजूर।
4: अरे तुमसे कहा ना है, तुम अब फिकर मत करो। हाँ
2: जी सरकार।
4: बस ये सामने फाटक वाला मकान हमारा है।
2: जी सरकार
4: आ जाओ।
2: जी
4: ये कोठरी इस सामने वाली गऊ का घर है, आ जाओ आ जाओ।
2: जी
4: बस यही बांध दो खूंटे से। हाँ और देखो इस खूंटे से बछड़े को।
2: जी

0: बहुत साफ कोठरी है हुजूर, मच्छर कीड़ा भी नहीं है।
1: ये लो रुपए, गिन लो।
0: जी, 10, 10, 20, 10, 30, 5, 35। ठीक है सरकार, ठीक है। अच्छा, अब चलो, सलाम हुजूर।
1: अजी सुनती हो, कहाँ हो?
2: आई। हाँ कहो।
1: एक नायाब चीज लाया हूँ आज।
2: क्या?
1: गऊ। साक्षात कामधेनु है, कामधेनु।
2: सच?
1: एक मुसलमान बेच रहा था, गाय ज्यादा की है, पर वो बेचारा जरूरतमंद था, 35 में बांध गया।
2: वो कैसे?
1: गऊ उसने कसाईयों के हाथ नहीं बेची।
2: ओ।
1: वो उसे 10-5 ज्यादा दे रहे थे, मेरे हाथों बेची, क्योंकि मैं उसे प्यार से रखूंगा।
2: जानवर की मोहब्बत के पीछे उसने नुकसान उठाना अच्छा समझा, नेक आदमी था।
1: अरे नेकी किसी एक जात या कौम की बपौती थोड़ी होती है।
2: गौ गाय घर में बंधी है ना।
1: आओ चलो दिखाते हैं।
2: चलो।
1: अरे आओ
2: चलो चल कर देखे।
1: पिछड़ा भी बड़ा सजीला और सुंदर है।
2: अच्छा?
1: हाँ
2: चलो।
3: सलाम हुजूर।
1: सलाम। तुम ही ने मेरे हाथ गऊ बेची थी ना?
3: जी हाँ हुजूर, जी हाँ।
1: रहमान है ना तुम्हारा नाम?
3: बजा फरमाया हुजूर।
1: कैसे आना हुआ?
3: हुजूर बड़ी जंग के बाद अब हज का रास्ता खुला है, अम्मा बूढ़ी हैं, हज करना चाहती हैं हुजूर। पर मेरे पास उतने रुपए नहीं है सरकार, आप 200 कर्ज दे दें हुजूर तो काम चल जाएगा।
1: रुपए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक बात समझ लो।
3: जी हुजूर।
1: मैं वादे पर रुपए लेता हूं, अगर वादा पूरा ना किया तो तुम जानो फिर मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा, समझे?
3: हाँ हुजूर, मैं वादे पर लौटा दूंगा हुजूर।
1: अच्छा तो बताओ कब दोगे?
3: सरकार 2 साल की मियाद रख लें हुजूर।
1: ठीक, लेकिन अगर 2 साल में नहीं दोगे तो ब्याज की दर 25 रुपए से 32 रुपया सैकड़ा हो जाएगी।
3: ठीक है सरकार, ठीक है।
1: अलबत्ता तुम्हारे साथ इतनी मुरव्वत करूंगा कि नालिस नहीं करूंगा।
3: जो चाहे कीजिएगा हुजूर, हुजूर के हाथ में ही तो हूँ।
1: दस्तखत कर सकते हो?
3: हुजूर बस इतनी ही उर्दू आती है।
1: ठीक है, यहाँ पे दस्तखत करो।
3: जी हुजूर। रहमान पकलम खुद, ये लीजिए हुजूर।
1: गवाह तुम नहीं लाए हो, खैर वो मैं करवा दूंगा, ये रुपए लो। 180 है।
3: 180?
1: हाँ हाँ 180, कुछ लिखाई की, कुछ नजराने की, कुछ दलाली के, सब मिलाकर 20 रुपए कट गए हैं।
3: आपकी मेहरबानी है सरकार। अच्छा हुजूर चलो। सलाम हुजूर।
1: सलाम।
3: छोड़ मुझे।
4: चल आया। अरे सरकार के पैसे ऐसे कोई नहीं हड़प कर सकता, चलता है। चल
3: चल रहा हूँ भाई, धक्के तो ना दो।
4: अरे अच्छा अच्छा चल।
5: सरकार रहमान को ले आया हूँ।
3: सलाम हुजूर।
1: क्या सलाम हुजूर, 2 साल की मियाद खत्म हो गई, तुम्हें खुद आने की तौफीक ना हुई, बुलवाने पर आए हो, क्या तुम्हारे 2 साल अभी पूरे नहीं हुए?
3: हुजूर
1: लाओ रुपए कहाँ हैं?
3: हुजूर बड़ी गर्दिश में हूँ।
1: अरे गर्दिश में तो सारी दुनिया है, मैं पूछता हूँ रुपए कहाँ हैं? रुपए?
3: अम्मा जब से हज करके आई है हुजूर तभी से बीमार पड़ी हुई है, रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ते गुजरता है हुजूर। जब तक जीती हुजूर कुछ सेवा कर लूं, पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहता है।
1: बीमारी हारी सबके साथ लगी रहती है रहमान, लेकिन कर्ज का रुपया वादे पर ही लौटाया जाता है।
3: हुजूर सही फरमाते हैं, बिल्कुल सही फरमाते हैं, पर अब की कुछ फसल नहीं हुई हुजूर, ऊख पानी बिना सूख गई,

0: किसान खेत में पड़े पड़े सूख गया, ढोने की मोहलत ही नहीं मिली हुजूर। रबी के लिए खेत जोत न सका, परती पड़े हुए हैं।
1: इस सब से हमें सरोकार नहीं है। तुमने वादा खिलाफी की है और ऊपर से ओझ कर रहे हो कि
0: अल्लाह ही जानता है हुजूर किस मुसीबत के दिन कट रहे हैं। हुजूर के रुपए की एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर। हुजूर साल भर की मोहलत और दे दीजिए, अम्मा अच्छी हुई और मेरे सर की बला चली हुजूर।
1: एक साल की मियाद बढ़ा दूंगा पर ब्याज 32 रुपए सैकड़ा हो जाएगा। हाँ,
0: जैसी हुजूर की मर्जी, जैसी हुजूर की मर्जी।
1: ठीक, अब तुम जा सकते हो।
0: हुजूर भाई बाप है, अन्नदाता है। सलाम हुजूर।
1: सलाम।

0: लाला ने क्या कहा?
1: कर्ज की मियाद खत्म हो गई थी अम्मा, अपने रुपए तलब कर रहे थे।
0: सख्त सुस्त नहीं कहा?
1: नहीं नहीं अम्मा, लाला खानदानी आदमी है, मेरे कहने पर एक साल की मोहलत और देती है।
0: बेटा, मेरी वजह से तुम बहुत बर्बाद हो गए।
1: नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं।
0: खुदा तुम्हें बरकत दे, अब मेरा वक्त आ गया, गम न करना।
2: अम्मा,
0: बेटा।
2: अम्मा, आप जी छोटा ना करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी।
0: नहीं नहीं बहू, अब और ज्यादा दिन बोझ नहीं, अब बोझ नहीं बनना चाहती।
1: एक और पानी पी लो अम्मा, जी संभल जाएगा। ये लो अम्मा, पानी पी लो।
0: हाँ, उठो, उठो, तुम रोने मेरी
1: अम्मा।

0: सलाम हुजूर।
1: तुम क्या करने आए हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है।
0: अच्छा सरकार, मैं फिर आऊंगा सरकार, मैं फिर आऊंगा।
1: अरे सुनो
0: जी,
1: जाते कहां हो?
0: सरकार
1: कैसे आए थे, क्या कुछ काम था?
0: नहीं सरकार, यूं सलाम करने आया था हुजूर।
1: फारसी की एक कहावत है रहमान, किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। क्या मतलब है कहो।
0: हुजूर, अम्मा।
1: क्या, तुम्हारी अम्मा?
0: वाह हुजूर, आज तीसरा दिन है।
1: रो मत, रोने से क्या फायदा है, सब्र करो। ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ।
0: हुजूर, कुछ अर्ज करने आया हूं पर हिम्मत ही पड़ती। हुजूर
1: कहो क्या बात है।
0: हुजूर, अम्मा के दफन कफन का इंतजाम पड़ोसियों से उधार लेकर किया। अब अल्लाह जानता है कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है हुजूर। और काम कुछ ऐसा आन पड़ा है हुजूर कि ना करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा हुजूर।
1: ऐसा क्या करना चाहते हो?
0: हुजूर, अम्मा की रूह की राहत के लिए फातिहे की जरूरत है, कब्र बनवानी है, बिरादरी का खाना करना है, गरीबों को खैरात देनी है, कुरान की तलावत।
1: जब रुपए हाथ में आए ये काम तब कर लेना।
0: सरकार, बिरादरी में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं बहुत मजबूरी में आपके पास आया हुजूर। जिंदा रहूंगा तो एक एक कौड़ी मैं सूद के अदा कर दूंगा हुजूर। इस घड़ी ना ही ना कीजिएगा सरकार, ना ही ना कीजिएगा।
1: तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है?
0: हुजूर, सरकार 200 मिल जाए तो काम चल जाएगा।
1: देखो रहमान,

0: रुपए तो तुम्हें दे देता हूं
1: सरकार,
0: लेकिन इस बार वादे पर न लौट आए तो मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा।
1: अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर, कौड़ी कौड़ी।
0: यहां दस्तखत करो।
1: आपकी बहुत मेहरबानी है।
0: ये लो कलम।
1: बहुत मेहरबानी है रहमान बकलम खुद, ये लीजिए हुजूर। अच्छा हुजूर, अब चलो। सलाम हुजूर।
0: सलाम।
1: सलाम।
0: अगले हफ्ते अम्मा को गए हुए 2 बरस हो जाएंगे।
2: अम्मा होती तो इस बार की ऊख देकर कितनी खुश होती।
0: अल्लाह के फजल से ऐसी ऊख लगी है कि हाथ ही भी घुसे तो समा जाए।
2: ए, तुमने कलेजा तोड़कर मेहनत भी तो की है, दिन को दिन और रात को रात ना समझा।
0: अरे मैंने ही क्या, तुम और दोनों लड़के भी तो जी जान से लिपट गए थे।
2: सुनो।
0: हाँ बोलो।
2: आपके लाला का कर्जा चुक जाएगा?
0: आपकी ज्यों ही गुड़ के रुपए हाथ में आए, सब के सब ले जाकर लाला दाऊ दयाल के कदमों पे रख दूंगा।
2: ऐसे कितने रुपए मिल जाएंगे?
0: अरे हारे दर्जे 700 तो कहीं नहीं गए। लाला चाहेंगे तो उसमें से 2-4 रुपए निकाल कर दे देंगे तो ले लूंगा, नहीं तो अबकी साल और चूनी चोकर खाकर काट लूंगा।
2: लेकिन वादे की मियाद तो अगले हफ्ते पूरी हो जाएगी ना?
0: अरे उन्हें ऊख की खड़ी फसल के बारे में बताकर गुड़ बिकने तक की मोहलत मांग लूंगा।
2: अल्लाह करे फसल सही सलामत गुड़ साल में आ जाए।
0: हाँ कहावत भी है, खेती की हालत यतीम बच्चे की सी है, पानी और हवा मुआफिक हुए तो अनाज के ढेर लग गए, और अगर इनकी मेहरबानी ना हुई तो लहलहाते खेत बेवफा दोस्त की तरह दगा दे जाते हैं।
2: और फिर ओला पाला सूखा बाढ़ दीमक आंधी से बची तो खलियान में आती
0: और
2: है।
0: खलियान से आग और बिजली दोनों का ही बैर है।
2: बस ये समझ लो कि इतने दुश्मनों से बची तो फसल,
0: नहीं तो
2: फैसला।

0: रहमान ले एक दो दम तू भी लगा ले।
1: लाओ काका लाओ। वाह वाह रहमान, अब के तेरी ऊँख बड़ी घनी उठी है भैया।
0: बस किसान की मेहनत का फल तो फसल ही है भैया।
1: ये तो सच है काका, मेहनत में रहमान की तरफ से कसर नहीं हुई।
0: तब देख ही लो कैसी जोरदार ऊँख है।
2: ये लो, तुम भी दो चार दम लगा लो भैया।
1: लाओ भैया लाओ।
3: भैया तुम बता सको ये कितने की फसल है?
1: ऊख तो भारी है, बहुत गुड़ निकलेगा। भैया मैं तो समझू हूँ 800 का बिक जाएगा,
3: पर मंडी में नया गुड़ पहुँचते ही भाव गिर जाते हैं, ये मुश्किल है।
1: अरे कम से कम 700 750 तो कहीं नहीं गए।
3: तुम ठीक कहते हो भैया, ठीक कहते हो।
1: आज बड़ी ठंडी हवा चल रही है रहमान।
3: अगहन है, अब ठंड न पड़ेगी तो कब पड़ेगी। मैंने इसी मारे ऊख के सूखे पत्तों की आग जला ली थी।
0: चिलन ताजा करने के काम भी आया है।
3: तुम ठीक कहते हो काका।
0: अरे क्या कर रहा है रहमान, आपको मत छोड़।
1: अरे अरे हवा से जलता हुआ पत्ता उड़ गया। अरे कम वक्त ऊख के बीचों बीच गिरा है। अरे सत्यानाशी तूने काहे को आग जलाई ऊख के पास।
2: अरे खेत में लग गई। अरे इसे बुझाओ किसी तरह से। अरे उधर तो ऊख तोड़ दे।
1: अरे सारे ऊख पर घर में तोड़ने का दे बाहर होगा। आग यहीं पर बढ़ रही है। चलो जल्दी करो, देख क्या कर रहे हो। खेत में ऊख को।
2: अरे आयो रे।
4: ये आग नहीं है, शायद ये गुस्सा है। इस आग को कोई नहीं बुझा सकता।

0: भैया, रहमान भैया सब्र करो, उसकी मर्जी के आगे किसकी चली है।
1: जो होना था सो हो गया, किस बुरी तरह उठ कर रही।

0: ये तो लाला का चपरासी आ रहा है, अब क्या होगा? खुदा, अब तू ही इस मुसीबत को आसान कर, कहीं आते ही आते गालियां न देने लगे। या मेरे अल्लाह, कहाँ चुप जाओ, कहाँ चुप जाओ।
1: रुपए लेकर देना नहीं चाहते? मियाद कल गुजर गई, जानते हो सरकार को एक दिन की भी देर हुई और उन्होंने नालिश ठोकी, बेभाव की पड़ेगी।
0: यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना भैया।
1: अरे ये हाल हवाल सुनने का काम नहीं है, ये चकमे किसी और को देना। 700 रुपए ले चलो और चुपके से गिनकर चले आओ। हाँ
0: देखते हैं जमादार साहब, सारी भूख जल गई, नहीं तो अल्लाह जानता है आपकी कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता।
1: मैं ये कुछ नहीं जानता, तुम्हारी भूख का किसी ने ठेका नहीं लिया। अब चलो, सरकार बुला रहे हैं।
0: मेरा हाथ छोड़ दो भैया।
1: अरे चल,
0: मुझे मत
1: कर। चल चल चल,
0: मैं खुद चल रहा हूँ।
1: चलता है या मैं? चल चल चल चल
0: हुजूर, मुझे बचाइए, मुझे बचा लीजिए हुजूर।
2: अरे ये क्या करते हो, मेरे पांव मत पकड़ो, छोड़ो।
0: मुझे अब इन्हीं कदमों का सहारा है हुजूर। खुदावंद, बड़ी विपत पड़ी हुई है, अल्लाह जानता है कहीं का नहीं रहा हुजूर, कहीं का नहीं रहा।
3: क्या सब भूख चल गई?
0: सरकार, जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दी हो। सारे गांव से बढ़कर भूख लगी हुई थी सरकार, गरीब परवर ये गैबी आफत ना पड़ी हुई होती तो हुजूर से उरीन हो जाता।
3: अब क्या सलाह है, देते हो कि नालिशी कर दूं?
0: हुजूर मालिक है, जो चाहे करे। मैं तो इतना ही जानता हूँ, हुजूर के रुपए सर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है। अपनी सोची नहीं होती हुजूर। दो बार वायदे किए, दोनों बार झूठा पड़ा, अब वायदा नहीं करूंगा हुजूर। अब जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों में रख दूंगा। मेहनत मजदूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह होगा आपके रुपए भरूंगा हुजूर, आपके रुपए भरूंगा।
3: तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी आरजू कौन सी है?
0: यही हुजूर कि आपके रुपए अदा हो जाएं। सच कहता हूँ हुजूर, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है हुजूर।
3: उठो रहमान, समझ लो मेरे रुपए अदा हो गए।
0: अरे हुजूर, ये कैसे समझ लो, यहाँ न दूंगा तो वहां देने पड़ेंगे हुजूर।
3: नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था।
0: सरकार?
3: हाँ रहमान, हाँ।
0: नहीं नहीं सरकार, नहीं, इतना बोझ सिर पर लेकर नहीं मरूंगा हुजूर।
3: कैसा बोझ, मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ भी आता नहीं, और कुछ आता भी था तो मैंने माफ कर दिया, यहां भी वहां भी। अब तुम मेरे एक पैसे की भी देनदार नहीं हो।
0: पर हुजूर, मैंने तो आपसे रुपया कर्ज के तौर पर लिया था हुजूर।
3: नहीं रहमान, असल में तुमसे कर्ज मैंने लिया था, वही अदा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरी कर्जदार नहीं हो।
0: नहीं हुजूर, नहीं।
3: तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान न किया हो, पर असल में वो मेरी धर्म पर एहसान था।
0: हुजूर,
3: मैंने भी तुम्हें धर्म के काम ही के लिए रुपए दिए थे, बस हम तुम दोनों बराबर हो गए।
0: सरकार।
3: और रहमान, तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती के काम आएंगे।
0: हुजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा, मैं तो आज से अपने आप को आपका गुलाम समझूंगा।
3: नहीं रहमान, नहीं, तुम मेरे दोस्त हो।
0: नहीं हुजूर, गुलाम।
3: गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्तिधन कहते हैं। तुम बहुत पहले मुक्तिधन अदा कर चुके हो रहमान, अब भूल कर भी ये लफ्ज मुंह से न निकालना मेरे दोस्त।
0: सरकार, खुदा आपको सलामत रखे हुजूर, खुदा आपको सलामत रखे।

जी धन, अभी आपने मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का ये रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। रूपांतर श्री बी एस भटनागर ने किया था। निर्देशक थे सुशील बैनर्जी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री बाकर मुज्तबा, राजेंद्र वर्मा, रईस मिर्जा, एच के वैश्य, एल एन भारद्वाज, आर एच चिश्ती, कारी मोहम्मद इलियास, मुमताज मिर्जा, जया मेहता और ललिता शंकर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्ध पोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। NEET UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग।

योग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लालरेम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हराया। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: today. According to preliminary reports, the toll may rise as rescue and medical operations continue. The NDRF, along with specialized chemical, biological and nuclear response teams, launched an immediate rescue operation and worked to contain the leak under strict safety protocols. Chief Minister C. Joseph Vijay ordered a high-level inquiry into the incident and directed a three-member committee to submit a report within 24 hours. The Chief Minister also announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the families of each deceased. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the ammonia gas leak incident at a seafood export unit in Tiruvallur, Tamil Nadu. In a social media post, Mr. Radhakrishnan and Mr. Modi extended their condolences to the bereaved families and prayed for the speedy recovery of those undergoing treatment. British Prime Minister Keir Starmer is facing increasing pressure to step down as leader of the Labour Party, with some critics calling for Andy Burnham to succeed him. The calls intensified after Burnham secured a decisive victory in the Markerfield by-election in Northern England earlier this week, defeating a challenge from the Nigel Farage's Reform UK and strengthening his credentials as a potential future leader. Meanwhile, Starmer says he will continue to lead the party and contest any leadership challenge rather than step aside. He is facing mounting pressure from within his own party for stepping down. The 19th Mumbai International Film Festival 2026 concluded today, bringing down the curtains on a seven-day celebration of non-fiction cinema. The closing ceremony was held at Mumbai's Ravindra Natya Mandir in the presence of Maharashtra Governor Jishnudev Verma, Additional Secretary in the Ministry of Information and Broadcasting Prabhat, and other dignitaries. Indian women hockey team has lifted the FIH Women's Nations Cup for the second time, defeating host New Zealand 2-0 in the final in Auckland today. With this, Indian team also secured an entry to the FIH Women's Pro League. The team produced a stellar defensive display to protect the lead provided by Navneet Kaur and Sunilita Topper. In cricket, India A defeated host Sri Lanka by 66 runs in the summit clash of the Tri-Nation A series in Dambola today. Put into bat, India A posted 377 runs for the loss of 9 wickets in stipulated 50 overs. Indian teenage sensation Vaibhav Suryavanshi smashed a half century in just 11 balls before striking 94 in just 29 balls. In reply, Sri Lanka were bowled out for 311 in 47.1 overs. And in women's cricket, India set a target of 159 runs against South Africa in a group A match of the ICC T20 World Cup in Manchester. Chasing the target, South Africa were 122 for 2 in 16 overs when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: Namaskar. Akashwadi se Vishwa Darpan ke saath, main Ashutosh. मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पर लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने का दबाव बढ़ा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय संघर्ष राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है। इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में शामिल की गई हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।

0: उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: संयुक्त अरब अमीरात के हजारों निवासियों ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस अवसर पर आयोजित विशाल योग सत्रों ने सामुदायिक स्थलों को स्वास्थ्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्रों में बदल दिया। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने दुबई पुलिस के सहयोग से दुबई पुलिस ऑफिसर्स क्लब में एक योग सत्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में परिवारों, स्कूली बच्चों, अनुभवी योग प्रशिक्षकों और स्वास्थ्य के प्रति उत्साही लोगों सहित सभी आयु वर्ग के 1,500 से अधिक लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में दुबई पुलिस बैंड द्वारा एक विशेष प्रस्तुति भी दी गई। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग विषय के अंतर्गत मनाया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। श्री गोयल आज मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी। इससे भारत के निर्यात को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडलों ने स्विट्जरलैंड के बर्गेन स्टॉक में उच्च स्तरीय सीधी बातचीत शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच हुए कमजोर अंतरिम समझौते को मजबूत करना और पश्चिम एशिया के संघर्ष को खत्म करने की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची कर रहे हैं। इस बातचीत में कतर और पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने कहा है कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद कर दिया गया है। वहीं अमरीकी सेना का कहना है कि यह जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी उपराष्ट्रपति ने ईरान के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और बातचीत मुख्य रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय स्थिरता और महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखने पर केंद्रित रही। अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इसे दोनों देशों के बीच शांति वार्ता का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य अमरीका और ईरान के संबंधों को बदलने के लिए एक नई शुरुआत करना है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई $6 अरब की धनराशि ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पर लेबर पार्टी के नेता पद से हटने का दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं कुछ आलोचक श्री एंडी बर्नहम को उनका उत्तराधिकारी बनाने की मांग कर रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में उत्तरी इंग्लैंड के मेकरफील्ड उपचुनाव में बर्नहम की निर्णायक जीत के बाद यह मांग और तेज हो गई। उन्होंने नाइजल फराज की रिफॉर्म यूके पार्टी को हराकर भावी नेता के रूप में अपनी साख मजबूत की है। इस बीच श्री स्टार्मर ने कहा है कि वे पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे और नेतृत्व के लिए किसी भी चुनौती का सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर नेतृत्व के लिए कोई चुनाव होता है तो वे पद छोड़ने के बजाय चुनाव लड़ेंगे। अफगानिस्तान के पूर्वी परवान प्रांत में एक वाहन पलटने से 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता फजुल रहीम मुस्कनियार ने बताया कि यह दुर्घटना कोही सफी जिले में मंडी कोल इलाके में हुई, जब वाहन में तकनीकी खराबी आ गई जिसके कारण

0: चालक को नियंत्रण खो दिया और वाहन पलट गया। घायलों को इलाज के लिए काबुल के अस्पतालों में ले जाया गया। अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रेम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हराया। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 19वें ओवर में 4 विकेट पर 142 रन बना लिए हैं। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पर लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने का दबाव बढ़ा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेशमा तिवारी विथ द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi asserts strong maritime capabilities key to country's economic and strategic influence. Commissions 3 indigenous naval warships in Kolkata. Talks underway in Switzerland between US and Iran to strengthen the interim agreement and consolidate efforts to end West Asia conflict. Pressure mounts again on British Prime Minister Keir Starmer to step down as leader of the Labour Party. Indian women's hockey team lifts FIH Nations Cup for defeating hosts New Zealand 2-0 in the final. And in cricket, India wins Tri-Nation A Series beating host Sri Lanka by 66 runs in final. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of maritime strength in the modern world, stressing that strong maritime capabilities are a deciding factor for countries' economic and strategic influence. He stated that India fully understands this reality and is preparing itself accordingly.
2: 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है।
1: The Prime Minister commissioned 3 indigenously designed and built naval ships, an advanced stealth frigate INS Dunagiri, a large survey vessel INS Sanshodhak, and an anti-submarine warfare shallow watercraft INS Agre at the Shyama Prasad Mukherjee port in Kolkata today. Mr. Modi noted that more than 200 MSMEs contributed to their construction, generating substantial employment and economic activity across the country. India will host the 11th BRICS Energy Ministers meeting at Gurugram in Haryana on the 25th and 26th of this month under its BRICS Chairship 2026. The meeting will focus on 3 key priorities: energy security and sustainability, energy access and equity, and technology and innovation. India's BRICS Chairship this year is guided by the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said India and the European Union

0: स्टे ट्यून्ड इन फॉर द न्यूज़ इन हिंदी।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिक गलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए व्यापार में सुगमता सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसपी शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: In the last 12 years of the NDA government, Prime Minister Narendra Modi has always emphasized that ease of doing business is one of the major priorities of the government. And the government has relentlessly been working towards this goal so that business opportunities can be democratized, more and more people can become a part of the nation building exercise. And of course, the concept which has been reiterated time and again that instead of job seekers, more and more people become job creators. So to discuss this very important topic of ease of doing business, how it has strengthened India's business framework in the last 12 years, we have two economic experts with us, Mr. Dilip Chinoy and Dr. S.P. Sharma, economic experts. A warm welcome to you on Akashvani.
2: Thank you.
1: So, Dr. Sharma, पहले आपके पास आते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से व्यापार जगत बढ़ा है, जिस तरह से ज्यादा नए व्यापारों को एक तरह से प्रोत्साहन मिला है सरकार की ओर से, जो रिफ्लेक्ट होता है स्टार्टअप्स, अगर हम देखें 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब 220,000 स्टार्टअप्स है हमारे देश में। सो एक स्टेटिस्टिक जस्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव कि किस तरह से ग्रोथ हुआ है। सो आप कैसे देखते हैं 12 वर्षों को बिजनेस एनवायरनमेंट जो इंप्रूव हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या लगता है आपको सरकार के कौन से एफर्ट्स, अगर आप टॉप टू हमें बताएं, इस दिशा में जो रिफॉर्म्स परिवर्तनकारी रही हैं?
2: जी बिल्कुल, सोनू जी आपने सही बताया कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं जो पिछले 12 वर्षों में, जिन्होंने एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू दी है हमारे इकोनॉमी को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग को और हमारे ओवरऑल जो देश का जो जीडीपी है उसको आगे बूस्ट अप किया है। तो सरकार का जो पहल था, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, मेक इन इंडिया से, क्योंकि मेक इन इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बिना कुछ भी नहीं था। तो सरकार ने मेक इन इंडिया को अनाउंस करते ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, बहुत बल दिया, जिससे कि हम बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। अगर हम देखें कि 2014 में जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक था वो 143 था, वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आता था उस टाइम पे, तो जिसमें हम 143 थे, बहुत नीचे थे, मतलब लगभग जो जितनी भी इकोनॉमीज हैं, जो भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं या फिर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, इवन के डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हमारे से काफी ऊपर थी। तो उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर पूरा जोर दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, तो हम धीरे धीरे करके 2020 तक जो थे

63 तक आ गए थे हम अपना रैंकिंग जो था सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करते हुए 63 पे आए. उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना इंडेक्स बंद कर दिया मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस. उसके बाद जो स्टेट्स ने उन्होंने अपना ब्रैप रिफॉर्म्स चालू किए बिजनेस रिफॉर्म्स असेसमेंट प्लान जो था. उसके बाद उसमें बहुत तेज गति से काम हुआ स्टेट्स में एक बहुत हेल्दी कंपटीशन हुआ जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक पैशन बन गया जो लोगों में बिजनेसेस में सरकार में उसमें ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स हों उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो होनी शुरू हो गई जो उसके पिलर्स हैं.

0: Trade agreement which we have signed during the last 6-7 years.
1: Absolutely.
0: With a great confidence,
1: yes,
0: that yes, we have a strong ease of doing business. We can compete with them in the global market or even in the domestic market, as ease of doing business has created a great level playing field in the economy. So going forward, I believe now we are very much capable to move forward and to become a great player in the global economy, to compete with many countries. Like Shunai mentioned, that our PMI is now at the top of the competitive economies.
1: Absolutely.
0: We are, our PMI is higher than any economy in the top 10 economies, like our services PMI, our manufacturing PMI. Even despite the such kind of headwinds at the global level, our PMI is more and more resilient in the global economic
1: Absolutely.
0: System.
1: Absolutely. So, Mr. Chaloy, jaisa ki abhi Dr. Sharma ne kaha ki hum, aur aapne bhi kaha ki itne hum aapadaon se guzre, itni mushkil situations jo international level par hui, chahe wo pandemic ho, chahe ye geopolitical conflicts ho, but फिर भी हमारे आर्थिक मजबूती बनी रही है. मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो सरकार के फ्लैगशिप स्कीम्स रही हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया या पीएम मुद्रा योजना, जिसमें आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए कोलैटरल फ्री बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है, या जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन सिस्टम बनाया गया था सरकार द्वारा, इनको आप कितना कहें कि क्रांतिकारी मानते हैं, जिन्होंने सबको, जिनकी भी ड्रीम थी एक व्यापार शुरू करने की, उसे पूरा करने का एक मौका दिया.
2: सुनो जी, अगर आप देखें तो अगर एक बिजनेस शुरू करने के लिए, और आपने एसपी शर्मा से ये पूछा था कि क्या बदला है, ठीक है, तो पहला जो चीज बदला, जैसे उन्होंने समझाया कि आप घर बैठे बैठे, और आपने पूछा ऑनलाइन का, आप घर बैठे बैठे अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं, और आप टैक्सेस भर सकते हैं. तो आपका जो समय बर्बाद होता था लाइनों में खड़े हुए और ये इंटरेक्ट करने के लिए, वो एक बहुत कम सा हो गया है. अगर आप देखें जो स्कीम्स जिसकी आपने बात की थी, तो ये स्कीम्स जो आपने इस तीन स्कीम्स की बात की थी ना, ये एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए है. जो आप देखें तो जो मुद्रा स्कीम है, वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और उनके लिए जो छोटे छोटे अमाउंट्स जो बैंक्स में एक बहुत अविश्वसनीय होती थी, क्योंकि बैंक के लेंडिंग पोर्टफोलियो में जिसकी उनको कॉस्ट पड़ती थी उस लोन को देने के लिए, वो उनका इंटरेस्ट कवर नहीं करता था. तो गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम एक तरीके से लागू किया, और इनमें ना मुद्रा स्कीम तो एक ही उस वर्ग के लिए, ठीक है, अलग अलग स्कीम जो है, स्ट्रीट वेंडर्स के लोन स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्कीम है. तो इस रिफॉर्म की एक खासियत है कि उन्होंने, और किसान क्रेडिट कार्ड उसको मत भूलिएगा, उन्होंने पूरे जो इकोनॉमी में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है, लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट बिजनेसमैन एंड एफडीआई के लिए, हर कदम पे उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनकी क्या जरूरत है, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसको कारीगर को एक लोन मिलता है अपने टूल्स को करने के लिए, और एक उनको स्किलिंग करते हैं. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. और जनधन योजना और जो आधार और मोबाइल का जो ट्रिनिटी है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल में लोगों की जिंदगी बदल दी है. और साथ में, क्योंकि वो छोटे छोटे अमाउंट्स जो जनधन योजना में आए थे, और जो करोड़ों अकाउंट्स खोले गए थे, अगर उसकी आप पूंजी जोड़िए, तो वो सारा जो पूंजी है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के काम आई है. वो पहले तो एक अपने घर में रखी रहती थी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती थी. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आज के जमाने में 2012-13 में आप पूछे कि आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे, तो लोग कहते थे इंजीनियर, डॉक्टर, या चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का नाम ही नहीं आता था. और अगर किसी को कहते कि आप बिजनेस शुरू करें, तो माँ बाप कहते कि नहीं बेटा, बेटी आप मत जाओ इसमें, आप एक नौकरी करो. एक माइंडसेट चेंज हो गया है देश भर में, गांव गांव में. और अब एक एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ही इज्जत है, और देश के लिए बहुत जरूरी है. और दूसरी जो उसके साथ में आया है, और आपको ये आंकड़ों से नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप बिजनेस में फेल करते हो कि आपकी बिजनेस चले नहीं, तो पहले ही एक बहुत ही बुरी नजरिए से देखा जाता था. अब कहते हैं नहीं बेटा, आप इस फेलियर से सीखो और दूसरा बिजनेस शुरू करो.
1: बिल्कुल.
2: और ये एक खास, पहले ये रिफॉर्म्स होने से पहले ये एक बहुत खास डिफरेंस था भारत में और अलग अलग इकोनॉमीज में. अब इंडिया में भी वो एक तरीके से आ गया. और जो ग्लोबल स्तर पे अभी आप देखें तो मेडिकल डिवाइसेस में,

0: ड्रोन्स में, कई कई सेक्टर्स है, स्पेस में यंग स्टार्टअप्स जो हैं, इस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस स्पेस में देखे तो इसरो से कम्पीट कर रहे हैं, डिफेंस में डीआरडीओ से कम्पीट कर रहे हैं, मेडिकल में मेडिकल लेबोरेटरीज के,
1: और कम्पीट की जगह शायद हम कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन का एक का सरकार का भी है कि उन्होंने सारे सेक्टर्स खोले हैं और वेलकम किया है।
0: बिल्कुल, आपने इमरजेंसी लोन फैसिलिटी किया था, लेकिन आप वो देखें, वो आत्मनिर्भर भारत का कोविड के अंतर्द्वान एक स्कीम था, जो कोविड में गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एनजीओ और सिटीजन ने जो कोलैबोरेट किया था। देखिए, कोविड के पहले तो हम ना पीपीई किट्स बनाते थे, ना वैक्सीन बनाते थे, ना वेंटिलेटर बनाते थे, पूरे गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ हमने वैक्सीन यूज की, अपनी ओन वैक्सीन, ठीक है, पीपीई किट्स में हम नंबर वन बन गए थे, वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया था, और कई एक तरीके से थे। और जो स्कीम्स आत्मनिर्भर 1, 2, 3, 4 मेरे ख्याल से थे, उसमें जो स्कीम्स दिए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इंडिया को स्टेबलाइज करने के लिए। और उसके खास बात की रिफॉर्म्स से अगर आप देखें तो जो हमने परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसमें लगाया था वो और देशों से बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी अनाज 80 करोड़ लोगों को एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, विमेन के लिए, अलग अलग जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है जो आपके श्रोता सुन रहे होंगे वो अपने बिल्कुल संबंध करेंगे कि हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कुछ हुआ है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं।
1: सो हम मान सकते हैं कि ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है, जैसे आपने जन विश्वास बिल की अभी कुछ समय पहले बात की थी कि काफी सारे डिक्रिमिनलाइज हुए हैं ऑफेंसेस और सजा घटाई गई है ताकि एक जो वो डर का जो माहौल था वो ना हो। एक और जो अभी डॉक्टर शर्मा ने बात करी, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान ब्रैप जो 2015 में शुरू किया गया, और उसका एक ग्रासरूट्स लेवल की बात कर रहे हैं, ग्रासरूट्स लेवल पर डेवलपमेंट पे जो बल दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये ब्रैप है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। सो आपको लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है भारत जैसे देश में जो इतना विस्तृत है, इतना विविध है, और हर एक ज्योग्राफी की अपनी कोई प्रोडक्ट है या अपना कोई ऐसा एक यूनिक प्रोपोजिशन है जो मोनेटाइज किया जा सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने सुनो जी, और उसमें आप देखें तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और एक कंपेटिटिव फेडरलिज्म है। पिछले 12 सालों में आपने दोनों देखे, तो मैं आपको एक दूसरी ओर ले जाता हूं, जो हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हम उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं, उसमें क्या किया, उसमें एक डैशबोर्ड बनाया कि भाई ये आपके इंडिकेटर, उसमें बिजनेस का भी इंडिकेटर है, और एक साल में सबसे ज्यादा कौन तरक्की कर रहा है उसको एक अवार्ड दे रहे थे। तो वहां के जो कलेक्टर्स हैं और वहां ग्रास रूट लेवल पे आप देखें तो वो डैशबोर्ड को देखते थे और कहां कोई अच्छा कर रहा है उसको एक लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट करने का देखते थे, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली उससे सीख सकते थे। अब क्या हुआ है कि ऑल्दो ये वर्ल्ड बैंक ने अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बंद कर दिया है, बट इंटरनली भारत में कंपेरेटिव करते हैं स्टेट्स में कौन क्या कैसे रिफॉर्म कर रहा है
1: जी।
0: उसको कंटिन्यू हो रहा है। तीसरी जो चीज है, कई स्कीम्स बजट में आए, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे आप एनवायरमेंट पे देखें, या कई स्कीम्स हैं जिसमें अगर स्टेट रिफॉर्म करेगा और स्टेट कुछ करेगा उसके साथ ही आपको सेंटर से फाइनेंसिंग मिलेगा। 2014 के बाद हर स्टेट में एक इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, हर स्टेट ये प्रेजेंट करना है उन्हें क्या रिफॉर्म किए हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किए हैं, और इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स का होता है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करे कैटलिस्ट हो गया है कि रिफॉर्म करने का।
1: और ये धुरी यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ बहुत बढ़ी है। डॉक्टर शर्मा, अगर आपके पास आए तो मार्केट एक्सेस पर भी बहुत जो रिफॉर्म्स हुए हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हैज बीन अ बिग एनेबलर इन दीज 12 इयर्स, क्योंकि उसको बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है। जो अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा लाई गई, या जो ONDC है, वन नेशन डिजिटल, एंड लॉजिस्टिकल रिफॉर्म्स जो हुई है लॉजिस्टिक्स में, उनको आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं MSMEs के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अपना जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको पहुंचाने के लिए मार्केट तक?
2: जी बिल्कुल सोनू जी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के साथ साथ सरकार ने नई पॉलिसीज भी दी है, जैसे कि आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात की है, उसमें बायर्स और सेलर्स, जो आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको कैसे आगे सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसकी बायर कैसे बन सकती है, और ONDC प्रोवाइड करता है कि जो ई कॉमर्स है आपका उसमें बायर्स एंड सेलर्स मिलकर आपस में कैसे अपने जो बिजनेस है उसको आगे ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्या है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, आपको बायर जो है इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं है, आप एक

0: फॉर्म पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं, तो फिर बायर आपको अपने आप ही मिलेगा। तो जैसे आपने रिफॉर्म्स की बात की, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार लेके आई जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट होता था 14% ऑफ जीडीपी होता था, और इस पॉलिसी के साथ साथ जो रिफॉर्म्स हुई, जो सरकार ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स की, जो रेल कनेक्टिविटी में जो रिफॉर्म्स की, जो एयर कनेक्टिविटी में रिफॉर्म्स की, और जो वाटरवेज में जो रिफॉर्म्स की, तो उनके मद्देनजर जो अब हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है दैट इज नाउ 9-10% ऑफ जीडीपी। तो में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 6-7 वर्षों में। और साथ साथ में जो मैं बताना चाहूंगा कि पीएलआई स्कीम जो एक ऐसी स्कीम है जो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, सरकार ने ऐसे 14 सेक्टर्स चूज किए जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं, जहां पे सरकार ने इंसेंटिव बेस्ड उनको स्कीम में आने को बोला, जिसमें कि आप देखेंगे कि उस स्कीम के मद्देनजर हमारा जो एक्सपोर्ट है बहुत इंक्रीज हुआ है। नाउ वी आर मेकिंग न्यू एंड न्यू रिकॉर्ड्स इन आवर एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी। हमारा जो एक्सपोर्ट है पिछले 6-7 वर्षों में हर एक साल नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इवन के पिछले साल भी जब ये हेडविंड्स थे, जब टैरिफ हेडविंड्स भी थे, जब आपका ये जियोपॉलिटिक्स भी चरम सीमा पे चला गया, तब भी हमारा जो एक्सपोर्ट है उसने नया कीर्तिमान $863 बिलियन का स्थापित किया, जिसमें सर्विसेज और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स दोनों है। और जैसे चिनॉय साहब ने भी बात की कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अगर हम पीछे 2020 के बाद कोरोना पीरियड के बाद का अगर हम अपना ग्रोथ रेट देखते हैं, दैट इज मोर देन 7% ऑन एन एवरेज। इमीडिएट कोरोना के बाद हम 9.7% पे ग्रो किए, उसके बाद मोर देन 8% पे ग्रो किए, उसके बाद हम 7.3 पे ग्रो, अभी जो टोटल अगर हम देखेंगे दैट इज मोर देन 7% इन अ रो, तो एक बहुत बड़ी चीज है। जबकि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 6% से गिर के अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है वो लगभग कोई 2.7% रहेगी या 2.6% रहेगी। तो कितना ग्लोबल ग्रोथ में कितनी डिसेलरेशन हुई, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट जो है इंटैक्ट रहा। अभी भी जो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स हैं वो 6.6% पे, हमारे आरबीआई का एस्टिमेट 6.5% पे, और हमारे जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एट अराउंड 7%। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अवर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अवर एक्सपोर्ट्स, अवर रिफॉर्म्स प्रोसेस एंड अवर रिफॉर्म्स फॉर दीज ऑफ डूइंग बिजनेस गो हैंड इन हैंड। ये चारों चीजें मिलके एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू जो है हमारी इकोनॉमी को दे रहे हैं। हमारे आगे लक्ष्य है, जैसे हम बात करते हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे 2047 तक, वो एक बहुत ही राइट डायरेक्शन में हमारी जो ग्रोथ हो रही है। जैसे 2030 का हमारे अनुमान है कि हमारा एक्सपोर्ट है जो हम $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट देखना चाहते हैं, जिसमें मर्चेंडाइज 1 ट्रिलियन होगा, सर्विसेज 1 ट्रिलियन होगा, और हमारी जो इकोनॉमी है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, और जो हमारा जीडीपी का साइज ऑफ जीडीपी दैट विल आल्सो क्रॉस 5 ट्रिलियन। तो कुल मिला के जो स्टेटिस्टिक्स है और जो रिफॉर्म्स है और जो क्वालिटेटिव जो डेवलपमेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी सरकार ने एक भव्य स्कीम अनाउंस की है, उसके पहले सरकार ने जो एक इंसेंटिव्स दिए एक्सपोर्टर्स को के मद्देनजर के जो एक्सपोर्टर्स है उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, भले ही हम डायरेक्ट तौर पे इंसेंटिव्स नहीं दे सकते, फिर भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कि उनको जो ये वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसका जो इम्पैक्ट है कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। तो इन सब चीजों में सरकार बहुत तेज गति से आगे रिफॉर्म्स कर रही है। और जैसे चिनॉय साहब ने एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की बात की
1: जी,
0: जो सरकार ने कोरोना के टाइम पे अनाउंस की थी, वो बहुत सक्सेसफुल थी। अब वेस्ट एशिया क्राइसिस में सरकार ने उस स्कीम को दोबारा अनाउंस किया, 2,55,000 करोड़ का जो स्कीम है, खास करके जो एमएसएमई है उनको सपोर्ट करेगा, उनका जो वर्किंग कैपिटल है उसको सपोर्ट करेगा। नाउ दे आर रेजिलिएंट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर लुकिंग हैड टू बिकम मोर एंड मोर प्रॉमिसिंग इन द इकोनॉमिक सिस्टम।
1: ओके, अनदर पॉइंट मिस्टर चिनॉय व्हिच आई वुड लाइक योर यू नो व्यू ऑन दैट लॉजिस्टिक्स, यू नो पीएम गति शक्ति, वेयर दे हैव टेकन अ मल्टी मॉडल अप्रोच टू फिजिकल कनेक्टिविटी, देन देयर इज लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक 2.0, यू नो द वे द टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड वेयर यू कैन जस्ट ट्रैक रियल टाइम कार्गो, और देयर आर सो मेनी रिफॉर्म्स फॉर फास्टर कस्टम क्लियरेंसेज एंड स्ट्रॉन्गर एक्सपोर्ट सपोर्ट। How important are these for creating confidence in India as an investment destination, both for domestic and for the foreign investors?
2: So, Sunil ji, you've talked of 3 different things and I'll answer each one separately. So, first, if you look at it, one of the challenges in the whole system was that, you know, to be export, and Mr. Sharma talked about how exports have grown. A lot of our exports were import dependent. I mean, you take gems and jewelry. You know, we import and then polish and then we send out, just for example, which is a large scale employment opportunity. Now, the challenges there were threefold. The first one was it took inordinate time to clear your goods from customs.
1: Yes.
2: And the processes were cumbersome. The second thing was it took a lot of time to get from your factory to the shipping location because of logistics.
1: Yes.
2: And the third was that when you exported, you didn't have

0: एग्जैक्टली एंड मेकिंग देम मोर एंड मोर इजियर. अगर आप देखें तो जो हम पहले बहुत बैकवर्ड माने जाते थे कि हम टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में, अभी हम सबसे आगे हैं. हमारी जो ग्रोथ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अडॉप्शन में, दैट इज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन एनी एडवांस्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम.
1: तो ये एक ब्रेकथ्रू मेजरली टू
0: यस, जो सरकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन जो है, जो सरकार ने लगभग कोई 10,000 करोड़ के फंड से शुरू किया, तो आज वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ा हुआ है. अब कंपनीज नाउ आर कमिंग फॉरवर्ड टू अडॉप्ट मोर एंड मोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टू बिकम मोर एंड मोर प्रोडक्टिव एंड कंपेटिटिव इन द नॉट ओनली इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी बट एट द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम.
1: डॉक्टर शर्मा, मिस्टर चनोय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.
2: थैंक यू.
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे व्यापार में सुगमता, सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा. इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसपी शर्मा. परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद. यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं.
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं. नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं. तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्र पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय समेत कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की, अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है।

0: मणिपुर के कला और संस्कृति मंत्री खुराइजम लोकेन ने कहा है कि मणिपुर एक छोटा राज्य होने के बाद भी देश की सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। विश्व संगीत दिवस और भाग्यचंद्र ओपन एयर थिएटर की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बात कही। कार्यक्रम में स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके 29 कलाकारों को सम्मानित किया गया। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची कर रहे हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिमसियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। दामुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रनों से हराया। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of maritime strength in the modern world, stressing that strong maritime capabilities are a deciding factor for countries' economic and strategic influence. He stated that India fully understands this reality and is preparing itself accordingly.
2: 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है, जब नीति स्पष्ट हो तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है।
1: The Prime Minister commissioned 3 indigenously designed and built naval ships at the Shyama Prasad Mukherjee Port in Kolkata yesterday. These include an advanced stealth frigate INS Dunagiri, a large survey vessel INS Sanshodhak, and an anti-submarine warfare shallow watercraft INS Agre. Mr. Modi noted that more than 200 MSMEs contributed to their construction, generating substantial employment and economic activity across the country. Highlighting recent achievements, the Prime Minister said more than 40 indigenously built warships and submarines have been inducted into the Indian Navy over the past few years. The National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026, re-examination for admission to undergraduate medical courses was conducted yesterday amid tight security arrangements. The National Testing Agency, NTA, said more than 20 lakh candidates appeared for the re-examination at 5,440 centres in the country and 14 centres abroad. The examination was conducted in 13 languages, including Hindi and English. The NTA said that extensive arrangements were made for all candidates, including more than 10,000 persons with disabilities. In Tamil Nadu, 7 people have been killed and more than 70 workers affected after an ammonia gas leak at a seafood export company in Periyapalayam yesterday. According to preliminary reports, the death toll may rise as rescue and medical operations continue. The NDRF, along with specialized chemical, biological and nuclear response teams, launched an immediate rescue operation and worked to contain the leak under strict safety protocols. Chief Minister C. Joseph Vijay ordered a high-level inquiry into the incident and directed a 3-member committee to submit report within 24 hours. The Chief Minister also announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the families of each deceased. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the ammonia gas leak incident at a seafood export unit in Tiruvallur, Tamil Nadu.

0: சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கை. டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அசுதோஷ். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मणिपुर के कला और संस्कृति मंत्री खुराइजम लोकेन ने कहा है कि मणिपुर एक छोटा राज्य होने के बाद भी देश की सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। विश्व संगीत दिवस और भाग्यचंद्र ओपन एयर थिएटर की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बात कही। कार्यक्रम में स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके 29 कलाकारों को सम्मानित किया गया। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD Vance कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची कर

मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजान कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय समेत कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन बेस्ट के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच हुई बैठक के बाद समाप्त हो गई। इस हड़ताल के कारण पिछले कुछ दिनों से मुंबई में बस सेवाएं बुरी तरह प्रभावित थीं। यात्रियों को यात्रा के लिए लोकल ट्रेन, मेट्रो सेवा, टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर निर्भर रहना पड़ा। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD Vance कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। इथियोपिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद में बहुमत बरकरार रखा है। देश में 1 जून को मतदान हुआ था। इथियोपिया के राष्ट्रीय चुनाव बोर्ड ने बताया कि प्रधानमंत्री अबी अहमद की प्रॉस्पेरिटी पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 501 सीटों में से 438 सीटों पर जीत दर्ज की। अक्टूबर में नई संसद के सत्र शुरू होने पर अबी को अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुने जाने की उम्मीद है। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजान कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में अगले 3-4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham.

0: நிகழ்ச்சியின் நிறைவாக ஒலித்த நாளை நமது படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம், கேஜே யேசுதாஸ், டி எம் சவுந்தரராஜன், எல் ஆர் ஈஸ்வரி ஆகியோர். கேட்ட நிகழ்ச்சி நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஆஷுதோஷ். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, आईएनएस दुनागिरी संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एक

0: कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनू राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वह चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी करेंगी। दौरे के दौरान राष्ट्रपति सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत करेंगी, जो चीता मित्र, चीता निगरानी दल, स्थानीय कर्मचारी और पर्यटक गाइड के रूप में काम कर रहे हैं। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों ने सहयोग लिया। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिक्ष समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची कर रहे हैं। इथोपिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद में बहुमत बरकरार रखा है। देश में 1 जून को मतदान हुआ था। इथोपिया के राष्ट्रीय चुनाव बोर्ड ने बताया कि प्रधानमंत्री अबी अहमद की प्रॉस्पेरिटी पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 501 सीटों में से 438 सीटों पर जीत दर्ज की है। अक्टूबर में नई संसद के सत्र शुरू होने और अबी को अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुने जाने की उम्मीद है। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजान कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में ऐसी स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of maritime strength in the modern world, stressing that strong maritime capabilities are a deciding factor for countries' economic and strategic influence. He stated that India fully understands this reality and is preparing itself accordingly.
2: 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है।
1: The Prime Minister commissioned 3 indigenously designed and built naval ships, an advanced stealth frigate INS Dhunagiri, a large survey vessel INS Sanshodhak, and an anti-submarine warfare shallow watercraft INS Agra at the Shyama Prasad Mukherjee port in Kolkata yesterday. Mr. Modi noted that more than 200 MSMEs contributed to their construction, generating substantial employment and economic activity across the country. Highlighting recent achievements, the PM said more than 40 indigenously built warships and submarines have been inducted into the Indian

那，人呢？

0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्ध पोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपनाने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वह चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी करेंगी। दौरे के दौरान राष्ट्रपति सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत करेंगी, जो चीता मित्र, चीता निगरानी दल, स्थानीय वन कर्मचारी और पर्यटक गाइड के रूप में काम कर रहे हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय समेत कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलीबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। इथियोपिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद में बहुमत बरकरार रखा है। देश में 1 जून को मतदान हुआ था। इथियोपिया के राष्ट्रीय चुनाव बोर्ड ने

0: பொங்கும் மங்களம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை செங்கல்பட்டு என் ஏ குணசேகரன், என் ஏ வெங்கட்ராமன் ஆகியோரின் நாதஸ்வர இசை கேட்டீர்கள். எம் எஸ் சுந்தரேஸ் ஐயர் அவர்கள் தவில். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसकी समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्ध पोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, आईएनएस दूनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल है।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले सहयोगियों, वन कर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा

सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। सीबीएसई ने छात्रों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने और अफवाहों से बचने की अपील की है। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वैंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागीर गालिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजा ने कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

துந்திருக்கிறது கதா கரிசம் தரைகிறதா பாரு நீ திரிகிறதை

அன்னையும் தந்தையும் நாரா.